91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के।

तो मेगा हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंचन धर्मशाला कहने श्रोताओ मैं या तो हाँ भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हो कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक ता श्रोताओ कर देना अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीते कहने हाँ सारे इन बनी रिया रेडियो गुंचन धर्मशाला ने गूंज अपने तंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

ये तो हम अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देन कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंडी।

अहम होला कहते ना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेश होताओ तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ देना कार्यक्रम जो अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे ये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या,
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।

0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम।
1: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
1: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
2: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
0: तुम क्या खड़ा हो?
2: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
3: ले जाए पक्का?
2: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
4: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
5: बेबी ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
6: दिला तो दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा।
5: हाँ बोलो।
6: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
5: अभी बताती हूँ। बेबी टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
6: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
7: गजब बेइज्जती है।

इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

93.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

कभी इस ओर कभी उस ओर चले जाते हो। मोहब्बत हमसे वफा गैरों से ये हुनर कहाँ से लाते हो। करवट बदल लेता हूँ मैं आजकल जो कभी मेरे ख्वाबों में।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

92.2 MHz पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या?
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आप?

0: हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
1: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
2: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
0: तुम क्या खड़ा हो?
2: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
3: ले जाए पक्का?
2: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
4: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
5: बेबी ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
6: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
5: हाँ बोलो।
6: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
5: अभी बताती हूँ। बेबी टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
6: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
2: गजब बेइज्जती है।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर श्रोताओं, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ। अब से लेकर 11 बजे तक रहेंगे आपके साथ, करेंगे आपका भरपूर मनोरंजन, बातचीत का भी मज़ा लेंगे और साथ ही साथ सुनाएंगे आपको प्यारे प्यारे से फिल्मी गीत और स्थानीय जानकारियाँ भी आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए कार्यक्रम में सबसे पहले जानते हैं इस वक्त धर्मशाला का तापमान। 18 डिग्री सेल्सियस तापमान है और वातावरण में नमी है 81%। और श्रोताओं, दिन भर के मौसम की अगर हम बात करें तो हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे और छुटपुट वर्षा की भी संभावना है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बातचीत भी होगी और साथ ही साथ जानकारियां भी साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में अब चलते हैं मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में जुबैदा फिल्म का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप है रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अब समय है आपके साथ आज का विचार साझा करने का, तो आइए सुनते हैं क्या कहता है आज का विचार। जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत खुद से करें। जी हाँ श्रोताओं, आज का विचार फिर से दोहरा रहे हैं कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत आप स्वयं से करें। श्रोताओं, अक्सर हम जो हैं वो बदलाव चाहते हैं और बदलाव हम जो हैं वो दुनिया में चाहते हैं, और हम अपनी तरफ से कई बार जो है वो शिकवे और शिकायतें भी करते हैं कि ये बदलाव होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। और हम परेशान भी होते हैं, फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, शिकवे शिकायतें चलती रहती हैं, लेकिन आज का विचार हमें यही संदेश देता है कि जो बदलाव हम दुनिया में चाहते हैं वो बदलाव हमें धीरे धीरे अपने अंदर लाने चाहिए। और अगर हम अपने अंदर बदलाव ले आते हैं तो स्वतः ही हमें जो दुनिया है वो भी बदली हुई नज़र आने लगती है, और ना तो हमें परेशानी रहती है और ना ही किसी से कोई शिकवा और शिकायत रहता है। तो श्रोताओं, ये था आज का विचार। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोतो, खामोशी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ में। 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला बहुत ही खूबसूरत सा नगमा।

0: श्रोताओ 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अब समय है प्रादेशिक समाचारों का। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम जारी रहेगा प्रादेशिक समाचारों के बाद भी।
1: कार्यक्रम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार पारदर्शी व प्रभावी जन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी संपत्तियों को बेचने का लगाया आरोप। और सोलन का 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय शूलिनी मेला कल से होगा शुरू। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा खेलकूद प्रतियोगिताएं भी होंगी आयोजित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों और मंत्रालयों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता है। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडिटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया।
1: इस बीच प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इस मौके पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला में आज होने वाले संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल मुख्य वक्ता होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार पारदर्शी व प्रभावी जन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में डिजिटल प्रौद्योगिकी व गवर्नेंस विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में आम लोगों के हित में अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की परियोजना व योजनाओं की निगरानी के लिए विकसित मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की प्रगति की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड विभिन्न योजनाओं की प्रगति व क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि सरकार विभागों के कार्य में आधुनिक तकनीक का समावेश किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता, कार्यकुशलता और सेवा प्रदायगी में सुधार हो सके। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और परंपराएं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान स्थापित करते हुए उसे गौरवान्वित कर रही है। चंबा जिला के बनीखेत में आयोजित आषाढ़ नाग मेले के समापन समारोह में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का अब तक का कार्यकाल देश के लिए स्वर्णिम रहा है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वैश्विक पटल पर भारत एक शक्तिशाली और सशक्त राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित हुआ है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर राज्य की बहुमूल्य संपत्तियों को बेचने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी संपत्तियों को बेचने जा रही है, जो सरासर गलत है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में हिमाचल ऑन सेल का टैग लगा दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब तक प्रदेश की बहुत सारी संपत्तियों को राज्य सरकार बेच चुकी है और इसी कड़ी में राज्य पर्यटन विकास निगम की 18 बड़ी संपत्तियों व होटलों को भी निजी क्षेत्र को ठेके पर देने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसका पर्यटन निगम के कर्मचारी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सोलन का सुप्रसिद्ध राष्ट्र स्तरीय शूलिनी मेला कल से शुरू होगा। 28 जून तक आयोजित किए जाने वाले इस मेले में 3 सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें बॉलीवुड व पंजाबी कलाकारों के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। अतिरिक्त जिला उपायुक्त राहुल जैन ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल और बैडमिंटन सहित अनेक खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि एंटी चिट्टा थीम पर आयोजित की जा रही इन खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन का मकसद युवाओं को नशे से दूर रखकर उन्हें खेलों से जोड़ना है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना प्रदेश के बेसहारा बच्चों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है। कांगड़ा जिला में भी बेसहारा बच्चों के सुरक्षित भविष्य निर्माण में ये योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना कांगड़ा जिले के सैकड़ों बच्चों के लिए जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है। योजना के तहत मई 2026 तक 27 वर्ष तक की आयु के 719 चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को करीब 57 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वहीं टोंगलेन ट्रस्ट में रह रहे लगभग 200 बच्चों को भी 6.25 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा सहायता और प्रतिमा 500 रुपए उत्सव भत्ता दिया जा रहा है। यह योजना केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव भी रख रही है। गृह निर्माण सहायता योजना के तहत इस वर्ष अब तक प्राप्त 36 आवेदनों को मंजूरी देते हुए प्रत्येक लाभार्थी के लिए 3 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की गई है। पहली किस्त के रूप में 1-1 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। इतना ही नहीं, जिले में 2 चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को घर बनाने के लिए भूमि भी उपलब्ध करवाई गई है।
1: राज्य सरकार ने लाहौल स्पीति जिले के केलांग उपमंडल, चंबा जिले के पांगी उपमंडल और जिला परिषद लाहौल स्पीति की मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन क्षेत्रों में हाल ही में पंचायत चुनाव के बाद नव निर्वाचित संस्थाओं को कार्यभार सौंपने और पूरे प्रदेश में पंचायतों के कार्यकाल को एक समान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला और पंजाब केसरी के लगभग एक जैसे शब्द हैं, एचआरटीसी चालक परिचालकों की मांगों पर सहमति, हड़ताल ली वापस। दैनिक जागरण ने लिखा है, हड़ताल वापस, चलती रहेगी बसें, एचआरटीसी कर्मचारियों की निगम प्रबंधन से हुई बैठक में मानी मांगे। दिव्य हिमाचल का कहना है, सरकार ने मनाए एचआरटीसी कर्मी, नहीं होगी हड़ताल। मौसम की खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, किन्नौर में फटा बादल, संपर्क मार्ग बहा, 5 जिलों में बारिश से पारा 4 डिग्री तक गिरा। हिमाचल दस्तक के शब्द हैं, मौसम ने ली करवट, कई जगह बूंदाबांदी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों और मंत्रालयों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के दिए निर्देश। संविधान हत्या दिवस आज, देश सहित प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार पारदर्शी व प्रभावी जनसेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी संपत्तियों को बेचने का लगाया आरोप और सोलन का 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय शूलिनी मेला कल से होगा शुरू। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा खेलकूद प्रतियोगिताएं भी होंगी आयोजित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं।
0: श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में अब वक्त है अंतराल का, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

श्रोतो, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में आपको बता दें, आज है 25 जून और आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में श्रोताओं जो है वो मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे की वजह, इसके बारे में भी जानेंगे। भारत सरकार द्वारा हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में आज के दिन को मनाने की घोषणा जो है वो की गई है। और ये दिन 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जिससे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों को उस समय के काले दौर की याद दिलाना है, जब आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रताओं और प्रेस की स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया था। इस दिन से जुड़े हुए कुछ खास बातें हैं, कुछ खास हम कह सकते हैं इस दिन से जुड़े हुए खास बातें हैं जिनको जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है, उसके बारे में भी हम कार्यक्रम में आगे ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल अंतराल के बाद और प्रादेशिक समाचारों के बाद ये जो अंतर आया है, मनोरंजन के बीच का गैप है, उस गैप को थोड़ा सा फिल करते हैं। श्रोताओं, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में जो है वो बात कर रहे हैं संविधान हत्या दिवस के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, आज यानी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में भारतवर्ष में आज का दिन जो है वो मनाया जाता है। और इसके बारे में श्रोताओं कार्यक्रम में हम आगे और भी बात करेंगे और साथ ही साथ आपके साथ और भी बातचीत करेंगे। श्रोताओं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बरसात जो है, खासकर हिमाचल की धर्मशाला की बात करें तो जुलाई और अगस्त में खूब भरपूर बारिशें यहाँ पे होती हैं, लेकिन इस बार जो हमारा जून का महीना अभी चल रहा है और अभी से नहीं बल्कि कुछ दिन पहले से ही बारिशों का आगाज़ जो है वो हो चुका है। और बारिश के मौसम में जहाँ हमारा आम जनजीवन थोड़ा सा जो है वो हम कह सकते हैं कि अस्त व्यस्त होता है, वहीं बारिश के मौसम में हमारी बहुत सी धार्मिक यात्राएं भी शुरू होती हैं और बहुत से लोग ऐसे ही जनरली कोई ना कोई ट्रिप जो है वो बना लेते हैं। तो आज कार्यक्रम में जब भी मुझे समय मिलेगा आपके साथ इसी विषय पे बात करूंगी कि बरसात के मौसम में, खासकर बारिशों का जो ये सीज़न होता है, इसमें अगर हमें बाहर कहीं घूमने जाना है तो यूं ही अनायास ही उसके लिए कार्यक्रम प्रोग्राम नहीं बना लेना है, पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें घर से बाहर निकलना है। और हम सब जानते हैं कि बारिशों के मौसम में जो है वो फिसलन होती हैं, कहीं पहाड़ियां दरकती हैं, कहीं पे पेड़ गिरते हैं, ऐसे में अगर हम घर बाहर से निकले हैं तो पूरी व्यवस्था के साथ निकलें। और इसी बारे में कार्यक्रम में आज विस्तार से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। वैसे तो आप सभी जानकार हैं, सभी जानते ही हैं कि किस तरह से निकलना है, लेकिन जब भी कभी कोई घटना या दुर्घटना होती है श्रोताओं, तो वो दुर्घटना हमें पहले से बता करके नहीं आती है, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर तैयारी के साथ घर से बाहर निकले। और इसी बारे में कार्यक्रम में मैं आपके साथ आगे भी बातचीत करूंगी। और अब कार्यक्रम में समय हो रहा है आपको कार्यक्रम का एक और अगला प्यारा सा गीत जो है वो सुनवाने का, तो आइए चलते हैं गीत संगीत की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में सपने फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत।

श्रोता 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में अब समय हो रहा है इतिहास के पन्ने पलटने का। जी हाँ श्रोताओं, आइए चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास घटा था आज के दिन इतिहास में।

तो आज के दिन यानी 25 जून 1975 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आग्रह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इसे भारतीय लोकतंत्र

आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कोरियाई युद्ध जो है वो छिड़ गया था। June 25, 1947 इतिहास की प्रसिद्ध और मार्मिक किताब द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इसका प्रकाशन भी आज ही के दिन हुआ।

के दिन के बारे में और आज के दिन जो कुछ खास घटा था इतिहास में वो आपके साथ हमने साझा किया। 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं अब चलते हैं कार्यक्रम में कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। आप हैं इस वक्त रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ श्रोताओं और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में और साथियों की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सदाबहार सा गीत। गीत है जमी आसमां फिल्म से। एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा ट्रैक और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 91.2 MHz पर।

श्रोताओ 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, आप रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आज के दिन 25 जून के बारे में। जी हाँ श्रोताओ, 25 जून को मनाया जाता है एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन। भारत सरकार द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है श्रोताओं। और 25 जून 1975 की रात देश में आपातकाल जो है वो लागू किया गया था। और ये दिन उन लाखों लोगों और लोकतंत्र रक्षकों के बलिदान, संघर्ष और यातनाओं की हमें याद दिलाता है और उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर जो है वो भी प्रदान करता है जिन्होंने उस तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा औपचारिक रूप से राजपत्र अधिसूचना जारी कर हर साल 25 जून को ये दिवस मनाने का जो है वो निर्णय लिया गया है। श्रोताओं इस दिन के बारे में कार्यक्रम में हम आगे और भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ और भी आपके साथ जानकारियां और बातें साझा करेंगे। फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

0: एक और शहीद हो गया। अरे क्या जरूरत थी उम्र कैद ले लेने की? अच्छा भला था गले में फंदा डालिए।
1: क्यों जी, क्या खराबी है हमारी लड़की में? अच्छा

1491.2 MHz पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब छोटा सा अंतराल और फिर वापस आएंगे गीत संगीत और मनोरंजन के साथ।

श्रोता 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज बरसात के दिनों में जब हम कहीं यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो किस तरह से अपनी यात्राओं का प्लान करें, किस तरह से ट्रैवल करने का तैयारी करें। श्रोताओं, बरसात के मौसम में सफ़र की योजना बनाते समय मौसम का पूर्वानुमान और सड़क की स्थितियों की जानकारी और जांच करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक बारिश, भूस्खलन वाले क्षेत्रों में जाने से बचें और अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान जैसे कि वाटरप्रूफ बैग, छाता, ग्रिप वाले जूते जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं आजकल बरसात के दिनों में, वो ज़रूर रखें। बरसात के सुहावने मौसम का सुरक्षित और शानदार तरीके से आनंद लेने के लिए हमें कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले श्रोताओं, हमारा गंतव्य जो है वो हमें सही से चुनना है, यानी जिस जगह हमें जाना है उस जगह के बारे में हमें डिसाइड करना है, खासकर बरसात के दिनों में। और बरसात के दिनों में पहाड़ों पर जाने से हमें बचना है। हालांकि बरसात के दिनों में बारिश से धुले हुए और निखरे हुए पहाड़ जो हैं वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं, लेकिन इन्हीं पहाड़ों पे बरसात के दिनों में जो है वो लैंडस्लाइड होता है, और जिससे कि बीते सालों में भी कई सारी घटनाएं और दुर्घटनाएं जो हैं वो सुनने और देखने को मिली हैं। और इसके साथ ही हमारी जो घाटियाँ हैं वहाँ, या फिर चाय के बागान हो गए, या फिर ऊँचाई जहाँ पर कम रहती है, प्लेन स्थान जो हैं जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का खतरा नहीं होता, इस तरह की जो जगह हैं उनका चुनाव हमें बरसात के दिनों में करना चाहिए।

0: फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी
1: और मम्मी भी।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज बरसात के दिनों में अगर हमें कहीं घूमना है तो किस तरह से हम जो है वो तैयारी करें और कैसे स्थान जो हैं वो चुने घूमने के लिए। और सबसे पहली बात आती है श्रोताओं की, पहाड़ों पे तो हालांकि आकर्षित करते हैं पहाड़, इस समय देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, धुले धुले निखरे निखरे से, लेकिन इस समय हमें जो है वो पहाड़ों की ओर कम ही जाना है। और बरसात में वैसे भी हमारे खासकर चंबा भरमौर की अगर बात करें या हिमाचल के और भी स्थानों की बात करें तो बरसात में कुछ धार्मिक जो है मणि महेश यात्रा जो है वो भी बरसात में होती है। अब आपकी धार्मिक आस्था और श्रद्धा के लिए तो हम उसके साथ खिलवाड़ भी नहीं कर सकते कि आप मत जाइए, लेकिन जब भी जाएं पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं, जो जो सामान हमें ज़रूरी है वो लेकर के जाएं और सुरक्षित यात्रा करें। और ट्रेंड लोगों के साथ अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो ट्रेंड लोगों के साथ जाएं, यूं ही अनायास ही ना निकल जाएं। श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और रेडियो गुंजन की एक और बड़ी प्यारी सी पहल आप सभी ने देखी भी होगी कि रेडियो गुंजन का जो हमारा फेसबुक पेज है श्रोताओं, उससे हम आजकल लाइव भी आपको दिखते हैं। ये अलग बात है कि इस वक्त आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं लेकिन सुन पा रहे हैं, और हमारे जितने भी उद्घोषक हैं उन सबको आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं। और आप लोगों का प्यार है श्रोताओं जो हमें इस तरह के नए नए कार्यक्रम लाने को जो है वो प्रेरित करता है। आप लोग प्यारे प्यारे श्रोता हमारे साथ जुड़े होते हैं और हम कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मनोरंजन से जुड़ा हुआ हो या फिर जानकारियां हो या किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो, भेंट वार्ता हो, सब कुछ आपके लिए हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए लाएं। और इसी कड़ी में बहुत से कार्यक्रम आपके लिए लाए भी गए हैं और आगे भी आपको बहुत से प्यारे प्यारे कार्यक्रमों के साथ हम रूबरू करवाएंगे। कार्यक्रम का अगला गीत भी आपको सुनवाएंगे श्रोताओं, लेकिन बातचीत जब हम करने लगते हैं तो बातचीत का भी अपना अलग ही मज़ा होता है। तो चलिए बातचीत का भी मज़ा लेंगे और साथ ही साथ जानकारियाँ भी साझा करेंगे आपके साथ। आइए चलते हैं जानकारियों की ओर।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विभागों की परियोजनाओं एवं योजनाओं की निगरानी के लिए विकसित मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बागवानी विभाग के उन कार्यक्रमों की भी समीक्षा की जिन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म में शामिल किए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि अन्य विभाग भी अपने फ्लैगशिप कार्यक्रमों की पहचान करेंगे जिन्हें आगामी समय में रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में वर्तमान

कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और लीजिए, आप सुनिए श्रोताओं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। और श्रोताओं, गीत संगीत का जो है वो अपना अलग ही मज़ा होता है। कार्यक्रम में हम आपके साथ जो है आपको गीत भी सुनवाते हैं, साथ ही साथ बातचीत का भी आनंद लेते हैं। और आज कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं आपको गीत सुनवाते सुनवाते फिर बातचीत की ओर खींची चली जा रही हूँ। चलिए, कार्यक्रम में गीत भी आपको सुनवाएंगे और बातचीत का आनंद भी आपको जो है वो

श्रोताओ, आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, बातचीत का मज़ा भी हम ले रहे हैं, साथ ही साथ जानकारियां भी साझा कर रहे हैं आपके साथ, और प्यारे प्यारे गीत भी कार्यक्रम में आपको हम सुनवा रहे हैं और स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा कर रहे हैं। और बता दें आपको कि इस समय धर्मशाला में कुछ ही देर में नशा मुक्त चिट्टा मुक्त कार्यक्रम का भी आयोजन जो है वो हो रहा है, या यूं कहें कि होने जा रहा है। अगर आप धर्मशाला और आसपास हैं तो इस कार्यक्रम में भी आप शामिल हो सकते हैं, इस कार्यक्रम का आनंद उठा सकते हैं। और अब आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, अब एक जानकारी, जरूरी सूचना आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री किशन कपूर जी की 75वीं जयंती के पावन अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा एवं रक्तदान शिविर का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। ये आयोजन आज यानी 25 जून को स्वर्गीय श्री किशन कपूर जी के निवास स्थान में जो है ये शिविर आयोजित किया जा रहा है। समय प्रातः 10 बजे से शुरू हो चुका है और रक्तदान इसमें जो भी इच्छुक हैं वो कर सकते हैं। निशुल्क चिकित्सा उपकरण जो है वो वितरित किए जाएंगे। व्हीलचेयर वितरण और श्रवण यंत्र जो है वो इस चिकित्सा शिविर में ज़रूरतमंद लोगों को वितरित किए जाएंगे और निशुल्क चिकित्सा परामर्श भी दिया जाएगा। हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ इस शिविर में उपस्थित होंगे, साथ ही स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ भी यहाँ पर होंगे। शिशु रोग विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सक जो है वो इस शिविर में उपस्थित होंगे और निशुल्क दवाइयाँ भी जो हैं ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें बांटी जाएंगी। अगर कोई भी व्यक्ति इस शिविर में जाना चाहता है तो ये शिविर जो है वो प्रातः 10 बजे से शुरू हो चुका है। और अधिक जानकारी के लिए आप फ़ोन नंबर है जिस पे संपर्क जो है वो बना सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9418903007। इस नंबर पर आप फ़ोन करके और अधिक जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति इस चिकित्सा शिविर में जाना चाहता है तो वो जा सकते हैं। श्रोताओं, ये थी जानकारी। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले गीत का।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज की किस तरह से हमें बरसात के मौसम में जो है वो घूमने फिरने की तैयारी करनी है और अपने साथ ज़रूरत का सामान ज़रूर रखें। श्रोताओं, अगर आप अपने साथ छोटा सा एक टेंट, क्योंकि बरसात के मौसम में पता नहीं होता कब जैसे कहाँ बारिश शुरू हो जाए और कहाँ इमरजेंसी में हमें ज़रूरत पड़ जाए, और अपने साथ लेदर या इस तरह के जूते जो फिसलें या फिसलन भरी जगहों में आपको खतरा जो है वो प्रदान कर दें, ऐसे जूते ना पहने। बरसात के मौसम में प्लास्टिक या इस तरह के जूते पहने जिनको गीला होने पर भी आपको भी तकलीफ़ ना हो और जूते भी सुरक्षित रहें, और साथ ही साथ इन जूतों की ग्रिप बड़ी अच्छी होती है, तो बरसात के मौसम में चलने के लिए ये जूते जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। श्रोताओं, और नदी नालों से भी दूर ही रहें बरसात के मौसम में, क्योंकि पता नहीं होता पहाड़ों पर कब जैसे भारी भरकम बारिश हो जाए और हम जो हैं उस बारिश की नदी नालों की चपेट में आ जाएं। तो श्रोताओं, बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन इन छोटी छोटी बातों को ही अगर हम ध्यान में रखेंगे तो अपनी यात्राओं को भी हम मनोरंजक और यादगार बना सकते हैं, और वहीं अगर इन बातों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कब क्या होनी अनहोनी हमारे साथ हो जाए हमें भी पता नहीं होता। तो इन बातों का ख्याल रखना है श्रोताओं, और अपनी यात्राओं को यादगार और खूबसूरत बनाना है। आप हैं इस वक्त रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ, और अब कार्यक्रम में एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

तो मुझसे शादी करोगी, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। और गीत के बोल थे जीने के हैं चार दिन। जी हाँ श्रोताओं, ज़िंदगी जो है वो बेहद खूबसूरत है, और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अगर हम इस तरह से रखते हैं कि ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी में सब कुछ खूबसूरत ही होगा, और अगर हम ज़िंदगी से शिकवे और शिकायतें करेंगे तो ज़िंदगी फिर उसी ढर्रे की ओर हमें ले जाएगी, और हमें ज़िंदगी में हर वक्त शिकवे और शिकायतें ही जो है वो करने का भी मौका मिलेगा बहुत बार, और ज़िंदगी वैसे ही शिकवे शिकायतें हमें जो है वो परोसती रहेगी। इसलिए ज़िंदगी को अगर

किया है उसे थोड़ा सा बदलना होगा। अच्छी चीज़ों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें, और अगर कई बार होता है कि अच्छा नहीं भी होता है तो उसमें बहुत समय बर्बाद नहीं करना है या उस चीज़ का रोना नहीं रोना है। ज़िंदगी हमेशा हमें नए मौके देती है, कुछ ना कुछ नया करने का हमें जो है ज़िंदगी में तलाश करते रहना चाहिए। और ज़िंदगी के प्रति अगर हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच बदलती है तो स्वाभाविक सी बात है ज़िंदगी भी बदलती है। इसलिए ज़िंदगी के प्रति अपनी सोच अच्छी रखें। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है दोस्तों, और बेहद खूबसूरत ये ज़िंदगी है, इसे खूबसूरती के साथ, ज़िंदा दिली के साथ जिए। 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, श्रोताओं कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब लीजिए कार्यक्रम में आनंद उठाइए, कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का, गीत है बादशाह फिल्म से, एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

धर्मशाला में ही नहीं बल्कि देश दुनिया में कहीं पे भी सुन पा रहे हैं या सुन सकते हैं गूगल में 91.2 मेगाहर्ट्स रेडियो गुंजन टाइप करके आप हमारे केंद्र के कार्यक्रम कहीं पे भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ रेडियो गार्डन ऐप के माध्यम से भी आप हमें देश दुनिया में कहीं पे भी सुन सकते हैं। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और श्रोताओं शाम 4 बजे इंदी अपनी गप्पा। जी हाँ श्रोताओं, ये कार्यक्रम गद्याली में होता है और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के हमारे होस्ट सचिन कपूर बहुत प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं गद्याली में। तो इस कार्यक्रम में जो है वो आप फ़ोन करके सचिन कपूर के साथ बातें भी कर सकते हैं, अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। ये कार्यक्रम होगा शाम 4 बजे से 5 बजे। श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब लीजिए कार्यक्रम में सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। गीत है अरिजीत सिंह की प्यारी सी आवाज़ आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब कार्यक्रम में लीजिए सुनिए विरासत फिल्म का गीत जसपिंदर नरूला और सोनू निगम की आवाज़ में।

श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनाएंगे आपको, अंतिम लेकिन प्यारा सा गीत, क्योंकि अब मेरा जो है वो समय हो रहा है घर जाने का। तो चलिए चलते हैं अपने घर और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत इसी वादे के साथ। बहुत जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या?
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा।
6: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप।
7: कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पड़ी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है, आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
14: तुम क्या खड़ा हो?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
15: ले जाए पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
16: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
17: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
18: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
17: हाँ बोलो।
18: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
17: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
18: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
13: गजब बेइज्जती है।

हर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गए हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या?
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा।
6: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
7: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
6: या आपको एक फोन आएगा।
8: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
6: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
8: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
7: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
8: रिसीव करते वक्त नहीं।
7: तो याद रहे,
9: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
10: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
11: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
10: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
11: आप चिंता ना करें।
10: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे।
11: पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का?
10: ये तो खोटा सिक्का है।
11: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
12: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा?
12: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाए पक्का?
12: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
13: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
15: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
14: हाँ बोलो।
15: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
14: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
15: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
12: गजब बेइज्जती है।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गेन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गेन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही यंग डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। इनका नाम अभिषेक है और ये भोपाल के रहने वाले हैं। दोस्तों, इनकी खास बात बताऊं कि इन्होंने अपनी मदर की जान बचाने के लिए मदर्स डे के दिन अपने लीवर का आधा हिस्सा डोनेट किया था। तो दोस्तों चलिए हम अभिषेक से बात करते हैं और इनकी कहानी जानते हैं और लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में और लीवर डोनेशन के बारे में इनकी राय जानते हैं। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: जी नमस्ते।
2: अभिषेक जी, जैसा मैंने आपके इंट्रो में बताया कि आप बहुत यंग हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपकी एज कितनी है, आप क्या काम करते हैं, आपने क्या पढ़ाई की है, कहाँ से आप हैं।
3: जी नमस्ते, मैं अभिषेक सक्सेना, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैंने मैकेनिकल ब्रांच से 2020 पास आउट हूँ
2: जी।
3: और मैं मतलब मैकेनिकल फील्ड में ही जॉब कर रहा था एज अ क्वालिटी इंस्पेक्शन पे, लेकिन मेरी मदर की तबीयत खराब होने के चक्कर में मुझे वो जॉब छोड़कर आना पड़ा।
2: तो आप किसी और सिटी में जॉब कर रहे थे?
3: जी, मैं इंदौर में पीतमपुर में जॉब कर रहा था।
2: ओके, सो 2020 में आपकी इंजीनियरिंग कम्प्लीट हुई थी, तो आई थिंक आपकी उम्र अभी 20 साल होगी लगभग।
3: मेरी जो है 24 है।
2: 24, ओके, ठीक है। सो अभिषेक, चलिए बात करते हैं लीवर ट्रांसप्लांट की और लीवर डोनेशन की। तो आपने बताया कि आपकी मदर को लीवर की प्रॉब्लम हुई थी, तो थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को डिटेल में बताएंगे कि कैसे इन सब की शुरुआत हुई और लीवर ट्रांसप्लांट तक बात कैसे पहुंची?
3: एक्चुअल में ये हुआ था कि मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था इंदौर में, मैंने अपनी मम्मी से बात की फोन पे। मेरी मम्मी ने बोला कि मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है
2: सडनली, आउट ऑफ सडन।
3: तो मैं गांधी जयंती थी उस दिन मैं अपने घर आया था, मैंने देखा मेरी मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है।
2: क्या हो रहा था?
3: उनकी पेट में पानी जमा हो रहा था,
2: पेट फूल रहा था,
3: पेट काफी फूल रहा था, पानी बहुत ज्यादा भर रहा था। तो उनका वेट जैसे नॉर्मली हम लोग देखते थे तो उनका वेट जो आता था 68-70 करीब आता था, लेकिन उस टाइम उनका वेट 75 के ऊपर ही था। तो हमें लगा शायद मशीन खराब होगी, फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए, ग्लोबल हॉस्पिटल भोपाल में ही बिट्ठल मार्केट के पास
2: जी।
3: तो हम वहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने उनका सोनोग्राफी करने को बोला, सोनोग्राफी कराया तो उनके पेट में पानी नजर आया। तो हमने कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये लीवर सिरोसिस है उनको। मैंने कहा लीवर सिरोसिस के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो फिर उन डॉक्टर ने हमें बोला कि लीवर, जब लीवर की स्टेजेस होती हैं फाइब्रोसिस, राइब्रोसिस, इस टाइप के, ये एक सिरोसिस है, इसके बाद सीधा फेल हो जाता है लीवर। तो हम लोग डर गए, हमने कही कि अब इनको कैसे भी करके ठीक करना है। तो हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला आप इनको ठीक करने के लिए इनके वेट लॉस करने की कोशिश करिए, नमक कम दीजिए और उनका वेट ऑटोमेटिक सही होगा तो लीवर रिकवर करना स्टार्ट होगा
2: जी।
3: बट हमने पूरी कोशिश की, उनको डाइट प्रॉपर फॉलो की, मैं जॉब छोड़ के आ गया। मैंने जॉब के बारे में सोचा भी नहीं है, इनसे बोल दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी मम्मी की ऐसी कंडीशन है मैं कंटिन्यू नहीं जॉब नहीं कर सकता। ने कही कि आप छुट्टी ले लीजिए, बट मैंने कहा मैं कितने दिन छुट्टी लूंगा क्योंकि ये बीमारी काफी लंबी चलने वाली थी जैसा हमें डॉक्टर ने बताया था। तो मैंने उनकी डाइट प्रॉपर फॉलो करवाई, उनका वेट अप्रोक्सीमेट 65 तक लेके मैं आ गया था। फिर डॉक्टर ने सडनली उनकी कुछ रिपोर्ट्स देखी जिसके वजह से उन्होंने बोला कि इनकी जो पैरामीटर्स हैं वो बिगड़ रहे हैं। मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे इतने अच्छे
2: बिल्कुल,
3: से
2: बिल्कुल, कोई
3: मुझे इतने अच्छे से नहीं पता कि पैरामीटर्स
2: कौन से हैं। सो अगर हम मोटा मोटा देखें तो ये सारी चीजें जो ट्रीटमेंट हुआ, दवाइयाँ चली, ऊपर नीचे हुआ, वेट कंडीशन सुधरी बिगड़ी, ये सब कितने दिन तक चला?
3: ये 2020 सितंबर से लेके ये 2021 के नवंबर तक ये चला।
2: एंड देन डॉक्टर्स ने फिर लास्ट चीज बोली
3: कि ट्रांसप्लांट
2: ट्रांसप्लांट ही
3: इससे लास्ट ऑप्शन।
2: इससे पहले कभी आपने ट्रांसप्लांट के बारे में सुना था?
3: मैंने सुना था तो डर लगता था क्योंकि मैंने सिरोसिस के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, तो उसमें ऑप्शन तो आता था ट्रांसप्लांट का, लेकिन हम वहाँ ध्यान नहीं देते थे कि ट्रांसप्लांट लास्ट ऑप्शन होता है, बड़ा ऑप्शन होता है। कोई भी अपने फैमिली में नहीं चाहता कि इस ऑप्शन तक जाए, सोचते हैं कि मेडिसिन से ठीक हो रहा है तो हो जाए।
2: बट आपके केस में ये सिचुएशन आ चुकी थी, उसके बाद क्या हुआ?
3: ये सिचुएशन ऐसे आई थी जब मतलब मम्मी की एनिवर्सरी थी, 22 नवंबर को उनकी एनिवर्सरी थी, हम लोगों ने एक अच्छा सेलिब्रेशन किया था, उसके जस्ट 6 to 7 डेज के बाद उनका एकदम से अमोनिया हाई हो गया था
2: जी।
3: अमोनिया जब हाई हुआ तो उनको सोचने के वो कॉन्शियसनेस उनकी खत्म हो गई,
2: डिसओरिएंटेड हो गई थी,
3: वो सोच समझ नहीं पा रही थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमें नहीं पहचान रही थी
2: जी।
3: मतलब वो कंडीशन ऐसी थी कि वर्स्ट कंडीशन थी हमारे लिए, हमने वो ऐसे अपनी मम्मी को कभी नहीं देखा था कि हमें मम्मी को ऐसा क्या हो गया। उसके उसमें उसको उनको ठीक होने के लिए जो लगता मैं वो करने को रेडी था।
2: जब डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट का बोला तो उन्होंने ये भी बताया होगा कि डोनेट फाइनली मतलब आपका डिसाइड हुआ कि आप डोनेट करेंगे जी। चलिए चलिए अभिषेक जी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और श्रोताओं छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आके अभिषेक से अपनी ये चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप वेट करिए, हम आते हैं एक क्विक ब्रेक के बाद।
1: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
4: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं और किसी और को ज़िंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने ज़िंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा ज़िंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का, जिंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जाने कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक में जाने से पहले चर्चा कर रहे थे अभिषेक से, जिन्होंने अपनी मदर को अपने लीवर का आधा हिस्सा डोनेट किया था। सो ब्रेक में जाने से पहले अभिषेक ने बताया कि कैसे प्रॉब्लम डायग्नोज हुई और उसका सॉल्यूशन पता चला है, अभिषेक ने डिसाइड किया। सो अभिषेक, जब आपने डिसाइड किया ये चीज़, तो मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं, क्योंकि आप तो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो और नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, तो आपको तो आपके मन में तो और ज़्यादा शंकाएं हुई होंगी कि मैं लीवर डोनेट कैसे करूँगा एंड क्या होगा उसके बाद की लाइफ स्टाइल क्या रहेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं, मम्मी की प्रॉब्लम कैसी रहेगी। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपकी मनोदशा बताइए, क्योंकि ये सब हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये शो सुनेंगे उनके घर में भी हो सकता है किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो और वो भी उस असमंजस में हो, तो उन सभी लोगों को इस चीज़ से हेल्प मिलती है।
2: नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी मतलब लीवर डोनेट करते समय मुझे भी बिल्कुल भी एक बात की मतलब अपने आप को लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं लगी थी कि मुझे कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं जो हूँ मैं ठीक रहूँगा, मुझे 110% पता था इस चीज़ का। हाँ, थोड़ा सा मेरे को लोगों ने जरूर मेरे को बोला था कि नहीं तुम ये करोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, कि तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बाकी है, अभी तुम ये करोगे तो मैं तो
1: कौन कौन लोगों ने
2: बहुत
3: रिलेटिव्स
2: दोस्त लोग और बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं तुम मत करो, तुम्हें जाना है। मतलब मेरे को एक्चुअली में मेरे को डिफेंस में जाने का मेरा बहुत था। हाँ, डिफेंस में जाने में थोड़ा मुझे जरूर डाउट आया हुआ कि वहाँ नहीं जा सकता, बट मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि दिक्कत होगी तुम्हें, बट मैंने वो सारी बातें इग्नोर करी। मैंने कहा ये सब चीज़ों से कुछ ही नहीं होगा। जो मैंने बहुत सारे पॉजिटिव एग्जांपल भी देखे थे, वो मैंने कहा 1% भी अगर चांसेस से ठीक होने का तो मैं 1% पे खड़ा क्यों नहीं होता।
1: बिल्कुल, मैं भी आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो इतने क्विक डिसीजन लेते हैं सिचुएशन में। जैसा आपने बताया कि आपने जॉब भी तुरंत छोड़ दी और पूरा फोकस अपनी मदर की हेल्थ पे दिया एंड देन क्विक डिसीजन लिया कि नहीं मैं ही डोनेट करूँगा, अपने बारे में ना सोचते हुए, अपने कैरियर, अपना फ्यूचर, सारी चीज़ें इग्नोर करके। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, मिथ्स जिनके मन में रहते हैं, मिथ्स के चक्कर में पड़ जाते हैं।
3: जी,
1: सो जब इन सब लोगों ने बताया और आपने उन सब चीज़ों की इग्नोर कर दी, सो अब जब ट्रांसप्लांट हो चुका है, अब वो आपको देखते हैं तो आप उनकी जो सोच है उसमें कुछ चेंज आपको नजर आया?
2: हाँ, उन्होंने ये बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा हमारे भी बेटा हो तो उनको भी ये काम करना चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चा भी अगर हो तो हमारे लिए इतना बड़ा स्टैंड लेना चाहे। ये सब बहुत लोग बोलते हैं और चाहते हैं।
1: और रिलेटिव्स का?
2: सारे रिलेटिव्स बोलते हैं, बट अब जो मतलब मेरा जो एक प्रोस्पेक्टिव था, अगर मेरी मम्मी ही ठीक रहती तो आज मुझे बहुत
1: जी
2: उस चीज़ से एक वो रहता कि
1: मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि अभिषेक ने अपनी मदर को लीवर डोनेट किया था, लेकिन बाई चांस कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से अभी मदर इस दुनिया में नहीं है, वो एक्सपायर हो गई हैं, लेकिन अभिषेक अभी बिल्कुल ठीक है। अभिषेक, अच्छा आप श्रोताओं को ये बताइए कि जब आपने लीवर डोनेट किया तो पेपर वर्क क्या रहा और कितना टाइम इन सब चीज़ों में लगा,
2: पेपर वर्क
1: क्या क्या दिक्कतें अगर कुछ आई हो तो वो भी बता सकते हैं आप, उनका हल भी बता सकते हैं। और
2: पेपर वर्क में हमें काफ़ी टाइम लगा था,
1: क्या क्या किस तरीके का
2: पेपर वर्क कैसा था? पहले इनसे परमिशन लेना, ये GMC से गवर्नमेंट परमिशन लेना, पुलिस वेरिफिकेशन करवाना, अपने आप को प्रूफ करना कि मैं इनका बेटा हूँ, हर चीज़ के सारे डॉक्यूमेंट में नाम सब चीज़ें, और मम्मी रेलवे एम्प्लॉय थी तो वो रेलवे से एफिलेटेड मतलब उनसे टाई अप था, जिस मतलब ऑपरेशन होना था रेलवे के थ्रू ही उनका ऑपरेशन होता, तो रेलवे की को भी परमिशन दिलवाना हायर अथॉरिटी से, जो रेलवे के जो हायर अथॉरिटी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ से भी उनको मतलब लिखवा के लाना कि हाँ इनको लीवर ट्रांसप्लांट नीडेड है, तब जाके ही मतलब ऑपरेशन आगे प्रोसेस होता। पहले रेलवे के परमिशन करवाया, फिर GMC जो मतलब मध्य प्रदेश का जो गवर्नमेंटल हॉस्पिटल है हेड, उधर से परमिशन दिलवाया, पुलिस की वेरिफिकेशन कराई, फिर बंसल हॉस्पिटल्स के सारे जो कमेटी बैठती उनकी परमिशन दिलवाई, सबकी परमिशन के बाद करते करते कम से कम 4 से 5 महीने लग गए थे
1: इन सब चीजों में।
2: अगर कोई मतलब ऐसी कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लगना चाहिए।
1: और अगर हम खर्चे की बात करें तो करीब कितना खर्चा इस
2: खर्चा अप्रोक्सीमेट 42 to 50 lakh जाता है
1: गया आपका
2: ऑपरेशन ही। ऑपरेशन का जो है वो 22 lakh to 20 lakh का ऑपरेशन होता है।
1: केस टू केस डिपेंड करता है खर्चा। आपको करीब 40 lakh 45 lakh पे पड़ा
2: है क्योंकि ऑपरेशन के पहले जो खर्चा हुआ वो कम से कम 7 से 8 lakh या 10 lakh जाता है और ऑपरेशन जो होता है वो 20 lakh 22 lakh।
1: ये सारे फंड्स आपने खुद ने अरेंज किए?
2: नहीं, हमें अरेंज हमारे मतलब रेलवे से टाई अप था तो रेलवे ने काफी इसमें ऑपरेशन में 14 lakh 14 lakh की मदद की थी
1: रेलवे की तरफ से क्योंकि आपकी मदर रेलवे एम्प्लॉय थी। ओके
2: जी, बाकी पूरा हमारा ही उसमें अरेंज रहता है
1: जी। सो अगर हम थोड़ी सी मदर की बात करें तो ट्रांसप्लांट हो गया था उसके कितने दिन बाद ये चीज़ है?
2: ट्रांसप्लांट हो गया था, मैं जो डिस्चार्ज हुआ था वो 1 week के बाद में डिस्चार्ज हो गया था। 1 to 10 days 7 week to 10 days में मैं डिस्चार्ज हो गया था।
1: 2 हफ्ते
2: हाँ 10 days में मैं डिस्चार्ज हो गया था मतलब अप्रोक्सीमेट। मम्मी 27th को डिस्चार्ज हुई थी और 29th को डॉक्टर ने फिर एडमिट करने को बोल दिया था
3: मंडे को,
2: क्योंकि मंडे को हमें बुलाया था कि आप आइए आपके कुछ ब्लड टेस्ट पेंडिंग रह गए हैं वो आप आके कराइए। ऑपरेशन के बाद बहुत नाजुक कंडीशन थी मम्मी की, वापस ले जाके उनको टेस्ट वेस्ट कराना, तो वो टेस्ट कराने बकायदा चल के गई थी, सारे टेस्ट करवाए थे। फिर डॉक्टर ने बोला कि उनको कुछ ग्लोबुलिन हल्का सा अप हो जा रहा है, तो उन्होंने कहा आप कुछ नहीं, आप उनको 1-2 दिन के लिए उनको एडमिट कर दीजिए वो ठीक हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है हम उनको एडमिट कर देते हैं। तो वह एडमिट कराया, फिर डॉक्टर ने बोला कि वो 1 हफ्ते में डिस्चार्ज हो जाएंगे, बस सिर्फ खाना नहीं खा रही है। तो वो 1 हफ्ते से वो 15 days हो गए वो खाना नहीं खा रही थी। फिर हमने भी मतलब हमारे जो कॉन्टेक्ट थे जिनके ऑपरेशन हुए थे हमने उनसे बात की कि ये हमने लीवर ट्रांसप्लांट कराया है वो खाना नहीं खा रही है, ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है। तो उन लोगों ने बोला कि कोई इंटरनल इन्फेक्शन होगा जो आपने शायद टेस्ट नहीं कराया। तो मैं गया था, मैंने डॉक्टर मेरे को डॉक्टर ने बोला कि इनका एक टेस्ट होना है CMV, बट उसको कोई कंफर्म नहीं करा कि इसको टेस्ट करवाना है कि नहीं करवाना है, उसको पेंडिंग में रखा। फिर मैंने थोड़ा गूगल करा, मेरा खुद ट्रांसप्लांट हुए 1 month नहीं हुआ था, मैं डेली हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था उस टाइम पे
1: जी,
2: मम्मी के जाके देखना, मेरे को बल्कि उल्टा बेड रेस्ट का समय था। मैं फिर मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला कि CMV टेस्ट वैसे करवाना है तो आप करवा लीजिए। तो हमने 15 June को टेस्ट कराया था और उसकी रिपोर्ट आई थी 22 June को, जिसमें वो जो इन्फेक्शन था CMV वायरस होता वो इंडिकेट कर रहा था, जिसकी रीडिंग जो आई थी 15 तारीख को 4000, मतलब 7 days में उसकी रीडिंग बढ़ गई थी 16000 के ऊपर पहुंच गई थी
1: जी।
2: तो हमने फिर 22 तारीख से उनकी दवाई देना स्टार्ट करवाई, कोई सी
3: दवाई इंदौर से मंगाई,
2: दवाई इंदौर से आती थी और फिर नहीं दवाई इंदौर से नहीं आती थी, दवाई देना स्टार्ट करी। तो उनके दवाई 27 तारीख को फिर टेस्ट कराया, तो फिर उनके मतलब जो CMV वायरस जो डिटेक्ट करा था वो डाउन होना स्टार्ट हुआ। तो जब डाउन होते होते वो 16000 से 12000 पहुंच गया और उनका जो लीवर रिजेक्शन हो रहा था जो डोनेट हुआ था वो रिजेक्शन होता था वो भी उनका पॉजिटिव वे में जा रहा था, वो भी उनका एक्सेप्ट होने स्टार्ट हो गया था क्योंकि वो वायरस की वजह से लीवर वो हो रहा था रिजेक्शन हो रहा था, क्योंकि उनको इम्यूनिटी ऑटो इम्यूनिटी डिजीज थी जिसके चक्कर में उनको लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था। तो फिर जैसे तैसे हमें रिपोर्ट थोड़ी पॉजिटिव मिली तो हमें अच्छा लगा कि शायद ये रिकवर
1: कंट्रोल हो जाएगा।
2: फिर 3 तारीख को हमें पता चला सडनली उनको बीच में एक चीज और कराई थी, ट्रैको करके होते हैं जिसमें मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो गले में कट करके यहाँ से मतलब सांस
1: ट्रैकोस्टोमी,
2: हाँ ट्रैकोस्टोमी वो करवाई थी, तो उसके चक्कर में उनका बोलना भी बंद हो गया था।
1: ओके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से
2: मेरे हिसाब से अगर वो CMV टेस्ट अगर उनका टाइम पे हो जाता तो एक अंदर था कि वो शायद बच जाती, वो शायद लैक ऑफ मतलब मैं कहूँगा कि सिटी इतनी

0: अच्छी नहीं थी कि जहाँ पे सारी टेस्ट की रिपोर्ट फ्रिक्वेंट आ जाए या टीम मतलब
1: टीम वर्क प्रॉपर नहीं
0: टीम
1: चाहिए।
0: वर्क प्रॉपर नहीं, क्योंकि जिन डॉक्टर ने हमें सलाह किया था ट्रांसप्लांट के लिए वो काफ़ी दिन शायद हॉलीडे पे थे उस टाइम पे, हम उनके कैबिन के बाहर भी जाते थे तो वो समय छुट्टी पे ही थे। हाँ
2: अभिषेक, यहाँ पर हम फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले अभिषेक की मदर की, तो चलिए हम फिर से अभिषेक से बात करते हैं और अपनी इस चर्चा को जारी रखते हैं। अभिषेक, ब्रेक में जाने से पहले आपने बताया कि कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, तो अब कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। तो आप कैसा फील करते हैं अभी? आपको कुछ कमी महसूस होती है? आपने लिवर डोनेट किया है तो, या कभी कुछ आपको परहेज करना पड़ता है, या कहीं से आपको ऐसा लगता है कि अब मैं उतना फिट नहीं हूँ जितना पहले था?
2: थोड़ा बहुत लगता है।
1: वो तो अभी आपका 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ इस वजह से, या फिर डॉक्टर्स ने बताया? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ तो लिवर डोनेशन के बाद आपका लिवर 3 से 4 महीने में पूरा ग्रो हो जाता है और अल्टीमेटली आप एक तरह से पूरी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं।
2: मेरे को ऐसा तो ज़्यादा नहीं लगता, ट्रांसप्लांट हुआ मेरे को इतना वीकनेस नहीं लगती, बट हाँ जो मतलब पहले जैसा मैं था थोड़ा सा चेंज आया है, बाकी मैं फिट हूँ।
1: वो तो वो सिर्फ मन का चेंज भी हो सकता है, धीरे धीरे आप नॉर्मल लाइफ में वापस आएंगे तो वो चीज़ हट जाएगी, क्योंकि बहुत सारे केसेस देखे हैं कि
2: बाकी मुझे अंदर से ऐसा पछतावा मुझे ये रहता है कि अगर मैं अच्छी सिटी से करता, अच्छे हाई मतलब जगह से करता जहाँ की सर्विसेज अच्छी होती है, जहाँ के डॉक्टर्स मतलब पूरी टीम अच्छे होते, तो शायद
1: और अच्छा रिजल्ट मिलता।
2: मम्मी मेरे साथ होती आज, क्योंकि कुछ चीज़ों की वजह से मतलब रिपोर्ट प्रॉपरली नहीं आई हमारे पास, जिसके चक्कर में लेट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गई।
1: सो अगर हम बात करें इस पूरे कॉन्सेप्ट की, जो अंगदान है, जैसा शुरू में आपने बताया कि आपने डिसीज़ डोनेशन के बारे में आपने बोला कि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, तो मैंने ही डिसाइड किया कि डॉक्टर ने जैसे लिविंग डोनेशन के बारे में बताया तो मैंने तुरंत डिसाइड कर लिया कि मैं दूंगा डोनेट करने। हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंगदान को सपोर्ट नहीं करते, जिसके कारण से वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी हैं, तो और जिसके कारण एक अच्छे भले हेल्दी इंसान को अपनी अंग दान करना पड़ता है। सो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मेरे हिसाब से तो हर घर में सबको, अगर आप फिट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको डोनेशन करना चाहिए,
1: प्लेज करना चाहिए, अंगदान का संकल्प करना चाहिए,
2: सबको देना चाहिए। मतलब ये गवर्नमेंट को ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि आप अपना बॉडी डोनेट करना चाहिए, आपको ज़रूरी है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बन जाएगी, किसी की लाइफ बच जाएगी, बहुत कुछ हो सकता है एक सिर्फ डोनेशन से। मैंने तो देखा आज के टाइम में लोग ब्लड देने तक से लोगों को मना करते हैं, बट करना चाहिए, ब्लड भी डोनेट करना चाहिए, बॉडी भी डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पे कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हमें पता चलता कि काश कोई कर दे, जब अपन जब दूसरे को करेंगे तभी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि जिनको ज़रूरत होती है उनको ही उसका महत्व पता होता है, जिनको ज़रूरत नहीं होती उनको उसका महत्व नहीं पता होता। सो बिल्कुल, तो दोस्तों ये थी अभिषेक की कहानी। अभी अभिषेक बिल्कुल रिकवरिंग पीरियड में है, ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके हैं, बिल्कुल अपने नॉर्मल डेली रूटीन के काम पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं और धीरे धीरे और बाकी की लाइफ भी रिस्टोर कर लेंगे। चूँकि मदर अब नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव सा फील होता है, लेकिन होने को तो कोई टाल नहीं सकता, कोशिश तो पूरी करी थी हमने, अपना पूरा काम किया, बाकी भगवान को जो मंजूर रहता है वही होता है। बट एनीवे, अभिषेक को हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि उन्होंने क्विक डिसीजंस लिए और अपनी मदर की जान बचाने की कोशिश करी। एंड हम लोग हमेशा यही बोलते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने अपने अंग दान कर दिए एंड उस सामने वाले की जान नहीं बची तो वो फेल हो गया। ऐसा फेल नहीं होता, अगर एक भी मिनट वो एक्स्ट्रा लाइफ उसने जी है हमारे एक यस कहने से, तो बहुत बड़ा काम है, ऐसा काम जो भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और सो इसी चीज़ के साथ मैं भी आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जैसा अभिषेक ने भी कहा कि हर घर में हर इंसान को अपने अंग दान का संकल्प ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आपके एक हाँ कहने से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। एक अंगदाता करीब 8 लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकता है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ टिश्यू ऊतक डोनेशन के ज़रिए बेहतर बना सकता है। सो कोई बुराई नहीं है, जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हम जला दिया जाता है हमें, या फिर दफना दिया जाता है, वो काम अंगदान के बाद भी हो सकता है, बट अंगदान अगर हम कर दें तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जिंदगियां खुशियों से भर सकते हैं, एंड उसके बाद हम अपनी अंतिम क्रियाएं कर सकते हैं पूरी, कोई को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस फैमिली को, उस पेशेंट को जरूर फर्क पड़ेगा।
2: सो 8 लोगों के चेहरे पे
1: बिल्कुल इसी विनती के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और अगले एपिसोड में हम जल्दी ही हाजिर होंगे एक नए शख्स के साथ, उसकी कहानी जानेंगे और कुछ नई बातें सीखेंगे। अभिषेक का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि अभिषेक ने इतना टाइम निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। सो अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आओ मिल के एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिल के एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहुं ओर फहराएं, आओ मिल के एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिल के एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं, आओ मिल के एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं।

यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सीय सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सीय उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की

अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या।
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
6: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
7: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
6: या आपको एक फोन आएगा।
8: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
6: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
8: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
7: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
8: रिसीव करते वक्त नहीं।
7: तो याद रहे,
9: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
10: पंडित, मुहूर्त कब का निकला?
11: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
10: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
11: आप चिंता ना करें।
10: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे।
11: पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का?
10: ये तो खोटा सिक्का है।
11: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
12: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
10: तुम क्या खड़ा?
12: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
12: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
13: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
15: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
14: हाँ बोलो।
15: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
14: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
15: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
12: गजब बेइज्जती है।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो 91.2 MHz ते पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो। तो मैं हां तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। तो मेरे नाल तुसी सुन रहे हो ये प्रोग्राम। तो आओ सुनते हैं प्रोग्राम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोते हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो कुंजन धर्मशाला के नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तो तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदां ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करते रहो पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल वही खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हैं तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

यह रेडियो कुंजन धर्मशाला 91.2 MHz इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी

निभाए कैसे? चलिए प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या।
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
6: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
7: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
6: या आपको एक फोन आएगा।
8: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
6: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
8: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
7: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
8: रिसीव करते वक्त नहीं।
7: तो याद रहे,
9: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
10: पंडित, मुहूर्त कब का निकला?
11: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
10: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
10: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे।
11: पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का?
10: ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
16: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
15: हाँ बोलो।
16: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
15: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
16: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
13: गजब बेइज्जती है।

0: कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ये तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक। पहले तो तुहा सारे दई माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तो सारी ठीक ठाक होने न कने अपना जेड़ा रोजाने दा काम कार है से करा दे होने न। मौसम जेड़ा है सभी बदलता रहता है कने अहां दे जेड़ा काम मन सभी चलियो रहते न। तो इस टाइम अहां दे जेड़ा काम चलियो न से चलियो न ऊरा लगाने दे कुथी ना कुथी ऊरा लगाने दा काम जेड़ा है से पे ही है कने कुथी अली नी भी पे है पर कई जगह जेड़ा है से ऊरा दा काम जेड़ा है से जरूर पे ही है। जिथे जिथे काम पे ही है से जरूर अहां जो कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते कने अली जिथे पानी नहीं होया या ऊर छोटा है सभी कॉल जरूर करी सकते क्योंकि हर दिन अहां किस प्रकार बिताते न या दिने दी शुरुआत जेड़ा से अहां किस प्रकार जेड़ा से करते न। तशो तो कार्यक्रम च जुड़ने वास्ते जेड़ा अहां दा नंबर है से नंबर तुहां तक पहुँचाई दे न फ्री तुहां इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। नंबर है 701-811-7091। तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। इंतज़ार की जड़ा घड़ी है से तुहां वास्ते बिल्कुल ख़त्म है कने अज कने दिने दे बारे च भी दसी दे ना। वैसे तो तुहां सारे जो पता होना है फिर ते थोड़ा दिया अज कने दिने पर कने दिनाक पर जड़ा नज़र है से जरूर अहां दौड़ानी है। अजकना जड़ा दिन है वीरवार दा दिन कने दिनाक दी अहां गल करिए 25 जून 2026 दा दिन तुहां जरूर इंजॉय करा देना कने अपनी जिंदगी दा जेड़ा सफ़र है सभी जरूर जेड़ा से तुहां इंजॉय करा दे होने न। तशो तो अहां भी अपने कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है तुहां सारे जो पता है कि आगाज एक प्यारे दे गीत कने होइयां तां कार्यक्रम दा जेड़ा सफ़र है से और भी प्यारा लगता है। तो सफ़र दी शुरुआत अहां कर दे न इस प्यारे दे गीत कने प्यारी दे शुरुआत करने।
1: नूरपुर का राजा पानी भर रही लड़की पर मोहित हो जाता है उसकी रानी बनने के, मगर ये खाने पर बुलाती।

माटी दी मह कार्यक्रम तो हाँ सारे ही सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कहने इसी कहने तो हाँ सारे ही सुनिया एक गीत ए फरमाइश फिर ते हाँ वापिस जड़े से अपनी गलबात ऊपर आई हो न क्योंकि गलबात करना भी यहाँ वास्ते जरूरी है कने जेड़ा तो हाँ दिया फरमाइश है न सभी जरूर तो हाँ तक पहुँचानिया न तो श्रोताओं विचार अनमोल जेड़ा विचार है

से कुथी ना कुथी अहाँ जो कुछ ना कुछ चिड़ै से जरूर सिखाई करी जानते हैं ना। तो श्रोताओं, धन अगर खत्म हो जाता है तो अहाँ से वापिस जिड़ै से कमाई सकते हैं ना, मेहनत करी करी। ज्ञान खत्म जिड़ै से ज्ञान अगर अहाँ खोइंदे ना तो अहाँ ज्ञान जिड़ै से सीखी करी हासिल जिड़ै से जरूर करी लेंदे ना। पर समय कने विश्वास अगर अहाँ खोइंदे ना तो कुथी ना कुथी अहाँ जीवन च सब कुछ जिड़ै से खोइंदे ना। समय दी अहाँ गल करना तो समय जिड़ै से अगर अहाँ समय दी बर्बादी कर देना या समय दा सदुपयोग अच्छे तरीके ने नहीं कर देना तो अहाँ समय जो ज़रूर जिड़ै से खोइंदे ना। समय जिड़ै से अहाँ जो वापिस नहीं मिलता है। कने विश्वास दी अहाँ गल करिए तो विश्वास भी अहाँ जो अगर अहाँ किसी पर विश्वास कर देना कने अगला व्यक्ति उस विश्वास जो तोड़ींदा है तो कुथी ना कुथी से विश्वास पाना भी फिरी मुश्किल जिड़े से हो जाता है। पर आज कने दौर दी गल करिए कि भूख जिड़े से इतनी बड़ी हो कि लोग जिड़ा न से दूसरे दी जिड़ा खुशी है तिना जो भी छीनी करी जिड़े से ले लेंदे न। तो जिंदगी है, जिंदगी दा सफ़र अहाँ जो यही सिखाते हैं कि खुद भी खुश रहा कने अगला जिड़ा व्यक्ति है उस जो भी खुश रखा। क्योंकि अगर अहाँ हमेशा अपने बारे च सोची के चल देना तो कुथी ना कुथी अहाँ अपना फायदा दिख देना कने दुए का जिड़ा नुकसान है से ज़रूर कर देना। कने मौसम दी ओर अगर अहाँ अपनी नज़र दौड़ा देना तो मौसम भी थोड़ा धूप जड़े से लगी हुआ है कने कुथी कुथी जड़े से मौसम भी अपनी करवट जड़े से बदलता रहता है। तो मौसम के अनुसार भी अहाँ अपना जड़ा ख्याल है से ज़रूर रखना है कने अहाँ भी तुहों का ख्याल जड़े से ज़रूर रख देना। कने इसी कने तो सारे भी इस कार्यक्रम के सफ़र जहाँ कने जुड़ सकते जल्दी जल्दी सफ़र कने जुड़िया। क्योंकि इंतज़ार तुहां जो रहा है कि कालू दिया 2 बजते न कने कालू दिया तो सारे ही इस कार्यक्रम के सफ़र कने जुड़ते न। तो सफ़र जो अगे बढ़ाते न कने सुनते न इस प्यारी दिया फरमाइशा जो तुह सारे भी इस फरमाइशा जो भी इंजॉय करा कने अपना जेड़ा काम कार है सभी करा।

हाँ बोला दीन रेडियो गुंचन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना आपने रेडियो दो शशि कने तो हाँ सारे गीत फरमाइश इंजॉय की थी। इस गीत की फरमाइश हाँ जो आई हो वे टेक्स मैसेज दे थ्रू कने तिना दा ना वे सभी जरूर तो हाँ तक पहुँचा दे न वंदना जी की फरमाइश हाँ तक पहुँची हो है कने से रहने वाले न स्लेट गोदाम ते तिना तक कहाँ आई गीत ए फरमाइश पहुँचाई कने फिर ते अपनी जड़ा गल बात है तिहा पर वापिस जड़ा है से जरूर आई आते हैं। दशो तो गल बात अहाँ की थी विचार जड़ा है से तो हाँ तक रख्या था कि समय कने जड़ा विश्वास है से तो हाँ सारे जो ही पता है समय दी अहाँ गल करिए समय जड़ा है से अहाँ दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। अगर समय जड़े से अपना अपने अनुसार चल आंदा पर आहां किस प्रकार समय के अनुसार चल दे न से तो हाँ सारे जो ही पता है। आहां कोई भी काम कर दे न आहां पहले ही से काम सोची होंगी कि आज कड़ा जड़ा दिन है से आहां इस काम पर करना है या ये काम जड़े से आहां करना है। तो उसी प्रकार अगर अहाँ तिना कम्मा जो समय अनुसार कर दे न तो हाँ अपनी जिंदगी च सफलता जड़े से जरूर हासिल कर दे न कने अहाँ हमेशा ये सोची करी चल दे न कि नहीं अजकना जड़ा काम है से नहीं कल करना है कल दा ना तो हाँ सारे जो ही पता है काल है। इस टाइम समय अहाँ गल जड़े से करा दे न तो अहाँ दे कार्यक्रम च भी 2:23 जड़ा सफ़र च होई आना तो तुहां सारे भी इस सफ़र च जरूर हम सफ़र बनी सकदे कने अहाँ कने गलबात जड़े से जरूर करी सकदे। तो थोड़ा देर फिर ते अहाँ आगे बढ़ने कने अगली फरमाइश भी तुहां तक पहुँचाई दे न क्योंकि गीत संगीत पहुँचाना भी तुहां तक जरूरी है कने गलबात जड़े से अहाँ दी हमेशा चली रहती कने तो हाँ गलबात भी इंजॉय कर दे न कने जड़ा फरमाइश है ना तिना जो भी जरूर जड़ा इंजॉय कर दे न क्योंकि हर किसी दी अपनी अपनी पसंद है।

कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तू हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तू हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कने इसी कने तू हाँ सारे ये गीत फरमाइश सुनी तुसी निक्का निक्का हस दे हो तशो तो हसना भी हाँ वास्ते कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार जड़ा हे चेहरे की स्माइल है ना से अगले व्यक्ति जो भी हसाई करी चिड़े से चली जाती है। तो जिंदगी का सफ़र है हमेशा इंजॉय करा हसा कने खुली करी अपनी जिंदगी जो चिड़े से जरूर बिता कने गल बात अह करा देन समय दी समय अनुसार इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कने जुड़िया तो सारे ही क्योंकि तुह सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम का सफ़र जड़ा है तुह तक रहा है से रहा है 2 से 3 बजे तक कने इस टाइम हाल सिर्फ आधा घंटा जड़ा है से बचे है तो जरूर तुह जुड़ा कने हाँ कने गल बात जड़ा है से जरूर करा जुड़ने वास्ते जड़ा हाँ नंबर है से फिर इतने तुह तक पहुँचाई देन नंबर है 7081817091 तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। तो श्रोताओं समय की अहाँ गल करिए तो समय हर जगह जड़ा से अहाँ का साथ दिंदा है कने अहाँ किस प्रकार समय की कदर जड़ा से करते हैं ना समय जड़े से अहाँ जो सब कुछ सिखाई करी जानता है पर अहाँ समय से क्या सीख लेंदे न से यहाँ पर निर्भर करता है। समय जड़े से अहाँ जो सुख

भी दिंदा है दुख भी दिंदा है, पर अहाँ किस प्रकार सबर करते हैं ना से अहाँ पर निर्भर करते हैं। समय अनुसार अगर अहाँ पढ़ाई करते हैं ना तो अहाँ अपनी जिंदगी च सफलता जड़ा है से जरूर हासिल करी पाते हैं ना। समय अनुसार अहाँ सपने जो साकार करते हैं ना या मेहनत करी करी अहाँ अपने सपने जो साकार करा दे ना तो सब इस समय पर ही निर्भर है। समय अनुसार अहाँ खाना बना दे ना हर चीज़ समय पर है। अगर अहाँ स्कूल जानते हैं ना तो अहाँ जो पता है कि स्कूल दी टाइमिंग इतने बजे है तो अहाँ घरे तो इतने बजे निकलना है कि इतने बजे अहाँ स्कूल जड़ा से पहुँची आना है। अगर समय इतने थोड़ा भी अग्गे पिछे हो जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ अहाँ जो डांट भी पौंदी है कने अहाँ जो अच्छा भी नहीं लगता है। अगर अहाँ कॉलेज जाते हैं ना या ऑफिस वर्क जाते हैं ना तो ही अहाँ समय के अनुसार जड़ा से जरूर जाते हैं ना। तो इसी कने अहाँ थोड़ा दे अगे बढ़ते हैं ना कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते हैं ना।

प्रस्तुतम तो सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कहने कन्या तो हाँ कहने गल बात करा देना स्मय दी जी। तो स्मय तो सारे जो ही पता है कि स्मय जड़े से कुसी वास्ते बिल्कुल जड़े से नहीं रुकता। स्मय दी जड़ा घड़ी दी सुई है जल तुहां ते हजो सुन देना तिस दी आवाज़ सुन देना तो स्मय दी जड़ा घड़ी दी सुई है से टिक टिक टिक करती रहती है कने अपने समय के अनुसार चलती रहती है से कुसी वास्ते बिल्कुल जड़े से नहीं रुकती है। समय जड़े से वक्त जड़े से बदलता रहता है कने हाँ वक्त के अनुसार कितना का कितना की बदल देना से यहाँ पर निर्भर करता है। वक्त जड़े से यहाँ की जिंदगी जो भी बदलता है कने हाँ जिंदगी च अपने जड़ा भी सपने न तिना जो किस प्रकार जड़े से साकार कर देन सभी अहाँ जो समय जड़े से ज़रूर मौका दें दे। पर अहाँ क्या समय की कदर करा देन कि नहीं करा देन अहाँ समय अपना कुतु लगा दे सही जगह लगा दे कि गलत जगह लगा दे थोड़ा देर दे ऊपर सोच विचार करी करी दिखा कि अहाँ अपना पूरा दिन जड़े से समय किस प्रकार जड़े से मैनेज करा दे या टाइम टेबल अहाँ दा बनिया। ठीक है बच्चे न तिना दा पता है कि स्कूल दी टाइमिंग 9 से 3 बजे तक है या अपने अपने अनुसार जड़े से स्कूल दी टाइमिंग होंगी तो टाइम टेबल तिना दा बनया कि एक पीरियड इतना 1 घंटे दे है 2 पीरियड जड़े से 1 घंटे दे है तो उसी अनुसार जड़े से अपनी पढ़ाई भी कर देना। फिर यहाँ घर आते न तो घर किस प्रकार अपने समय का जड़ा सदुपयोग है से कर देना से यहाँ पर निर्भर करता है। समय च एक खासियत ये भी है कि यहाँ अपनी जड़ा जिंदगी है से समय पहले भी सही था उन भी सही है पर यहाँ अपनी जिंदगी कुथी ना कुथी भाग दौड़ भरी जड़े से बनाई ली हो हूँ तो हाँ सोचा दे उन्हें कि भाग दौड़ भरी यहाँ अपनी जिंदगी कई बनाई ली हो भाग दौड़ भरी जिंदगी यहाँ इधर वास्ते बनाई ली हो कि यहाँ ल अपने वास्ते समय नहीं है अपनी फैमिली वास्ते समय नहीं है समय है भी तो हाँ इसका सही सदुपयोग जड़े से नहीं करा दे सदुपयोग हाँ मोबाइल फोन च करा दे। अगर अहाँ खाना खाना भी बैठे ना तभी अहाँ मोबाइल फोन अपने कन्ने रखा दे कने समय जो या अपनी फैमिली जो जड़े से समय यहाँ नहीं दे दे। दर्शोता हूँ तो हम इस समय अनुसार इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़िया कने यहाँ कन्ने गल बात जड़े से ज़रूर करी सकते तो इसी गल बात कन्ने अहाँ अगे बढ़ते न कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देन क्योंकि फरमाइशा पहुँचाना भी तुह तक जरूरी है कार्यक्रम का जोड़ा माहौल है से थोड़ा जहा चेंज करना भी जरूरी है। तो सारे जो ही वैसे भी इंतजार रहा है कि कल कार्यक्रम का जोड़ा माहौल है से चेंज होता है तो इसी कहाँ कार्यक्रम का जोड़ा माहौल है से चेंज करते न कने तो सारे जो ही लेकर चलते न इस प्यारे दे गीत और फरमाइश की ओर क्योंकि थोड़ा दिन इंतजार तो तुह जो करना ही पौना इंतजार करके ताही तो तुह अपनी जिंदगी जो और भी बेहतर जड़े से बनाई सकते तो जरूर तुह इस गीत जो भी इंजॉय करा कने इस गलबात जो भी जरूर इंजॉय करा।

दर्शकों तो सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने हाँ कार्यक्रम च गल बात करा देना समय दे उपर समय जिहड़ा से अपनी रफ्तार लेकरी जरूर चलिया है कन्ने हाँ भी समय दे अनुसार जरूर जिहड़ा से चलिया न एक एक मिनट जिहड़ा से अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है चाहे से अहां अपने सपनों जो साकार करने वास्ते अपना समय जिहड़ा से लगांदे न या कुछ भी अहां अपना समय जिहड़ा से प्रकृति कन्ने अहां समय बिता दे न तां जो एहसास होता है कन्ने अहां अपने मन जो शांत जिहड़ा से जरूर करी पा दे न कन्ने खुद जो भी अहां खुश जिहड़ा से जरूर रखी पा दे न पर आज के दौर की अहां गल करिए तां कुछ ना कुछ अहां ज़्यादातर अपना जिहड़ा समय है या समय अहां मोबाइल फोन च दे दे सिर्फ अहां वास्ते मोबाइल फोन ही सब कुछ है बाकी अहां वास्ते कुछ भी नहीं है तो थोड़ा जिहा मोबाइल फोन ते साइड या अहां मोबाइल फोन जो साइड रखी दे ना तो थोड़ा अहां जो अपनी फैमिली कन्ने समय जिहड़ा से मिली आंदा है कन्ने अहां फैमिली जो भी समय दिंदे ना कन्ने एक दूए अंदर विश्वास कन्ने प्रेम भावना भी जरूर बढ़ती है कन्ने हमेशा अगर अहां फोन च ही रहिंदे ना तां से प्यार भावना भी बिल्कुल ख़त्म है से विश्वास भी बिल्कुल ख़त्म है तो हाँ चाहते हैं ना कि रिश्ते जो हाँ हमेशा कायम रखन तो थोड़ा दिया अपने जो प्यार दिया अपने जो समय दिया समय की कदर करना जड़े से जरूर सीखा अगर अहाँ समय की कदर करगे ताई समय अहाँ की कदर करता है कने अगर अहाँ समय की कदर नहीं करते ना तो समय अहाँ की भी कदर जड़े से नहीं करता है जिन्हें अहाँ प्रकृति की अगर कदर नहीं करगे तो प्रकृति बिल्कुल अहाँ का अच्छा सोचती है पर कुछ ना कुछ अहाँ जो कुछ ना कुछ जड़े से सबक जरूर दे करी जाती है कने अहाँ फ्री ते थोड़ा दिया क्या बढ़ते न कने तो हाँ जो इसी समय के अनुसार अहाँ जो भी थोड़ा दिया तो हमें बारे सोचना पौना क्योंकि समय अनुसार चलेंगे ताही तुहदियाँ जड़ा फरमाइश न से अहाँ तो तक पहुँचाई सकते इस गीत की फरमाइश अहाँ जो आई हुए धर्मशाला ते कने तिना दा नाम है स्नेहा जी तिना तक अहाँ ये गीत ये फरमाइश पहुँचा देना तो वहाँ सारे भी इंजॉय करा।

अहमुलादीन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कन्या फिरी ते वापिस जड़े से तुह तक पहुंची होन समय दे अनुसार समय की गलबात अहाँ करा देन समय जड़े से किस प्रकार चलद समय तो चलता ही रहता है। जड़ा घड़ी दी सुई है ना से हमेशा टिक टिक टिक करती रहती है, पर अहाँ समय दे अनुसार चलते न कि नहीं चलते न से यहाँ पर निर्भर करता है। वक्त दी जेड़ा कई पल हैं से यहाँ ये सोचते न कि ये पल जेड़ा न सेतु ही थमी हैं, तो हम भी जलू तिना पलां जो याद करते न या सोचते न तो तुह जो भी ये एहसास होंगे कि काश से पल जेड़ा न से फिरी ते वापिस आई जान या से पल फिरी ते इतु ही जड़े से थमी आन। कुछ यादा अहाँ जो जड़े से हमेशा हर दिन दिया संजोई के रखना चाहिए दिया। अजकना जड़ा दिन है से अहाँ जो बड़ा कुछ सिखाई करी जानते हैं, क्योंकि पल भर दा जड़ा भरोसा अहाँ बिल्कुल नहीं करी सकते जिंदगी दा, ता हमेशा अपनी जिंदगी दा जड़ा सफर है या समय है से हर पल जो याद दे माध्यम ने तो हाँ जड़े से संजोई करी रखी सकते, कने हर पल जो इंजॉय जड़े से जरूर करी सकते। कने तो हाँ सारे इसी कने अपनी रेडियो दो शशि जो भी दिया अनुमति, क्योंकि हाँ भी समय अनुसार तो ते अनुमति लेनी है, कने तो हाँ भी समय अनुसार इस कार्यक्रम जो सुन दे रहा करा कने इन्हें ही सुन के ताई ता तुहदा मन थोड़ा देर चेंज होना है, कने तुह भी खुश रहना है। तो चलते न तुह सारे ते उन अनुमति लेंदे न कने तुह जो ले चलते न गीत दी ओर।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या?
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोल नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा।
6: बताए, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
7: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
6: या आपको एक फोन आएगा।
8: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
6: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
8: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
7: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
8: रिसीव करते वक्त नहीं।
7: तो याद रहे,
9: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
10: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
11: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
10: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
11: आप चिंता ना करें।
10: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
11: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
12: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
10: तुम क्या खड़ा?
12: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
13: ले जाएं, पक्का?
12: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
16: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
15: हाँ बोलो।
16: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
15: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
16: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
12: गजब बेइज्जती है।

आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपने रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपने रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या?
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे।
12: पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का?
11: ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
6: ले जाएं, पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
16: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
15: हाँ बोलो।
16: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
15: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
16: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
13: गजब बेइज्जती है।

नमस्कार श्रोतो, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और आऊँ सचिन कपूर हाजिर बुजुर्ग कार्यक्रम लेकर इन दी अपने गप्पा। बहुत बहुत स्वागत है जनाब सभी रा होने वाले रा हार्दिक अभिनंदन है। कहें तो कैसे तो सब उम्मीद करनो आ तो है सब खरे भुने अपने अपने घर है बढ़िया भुने हिन और कार्यक्रम जो कि असो हुनो कर दे बुने हिन कार्यक्रम रा आनंद की असो लेना आवे तो सुशो तो जरूर जुड़ सकते हैं तुंदी फरमाइश अगेन असो जरूर असो पूरी करनी ने और अपने क्षेत्र रे तुसु कोई ऐसी गल असो होगी जरूर साझा करनी है जती चूर मनु हो गया सो और तहा जानकारी के बारे किया सो पता लग गया छो तो है ना तो जरूर इस समय चल दें और मौसम री किनारी तुसु लेकर चल दें सो तो इस समय किया सो मौसम बिल्कुल 22 डिग्री सेल्सियस रे आसपास किया सो इस समय तापमान बन रहा है सो तो और नमी री गल करूँ तो नमी इस समय किया सो 73% बन रही है और तो सब श्रोता की जरूर जुड़ सकते हैं कॉल कर सकते हैं जनाब 7081889 पर आइए था आनंद लेन देन कार्यक्रम मंच आगाज कर देन कार्यक्रम रा इस गीत सोगे बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने बन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रहे।

शोध एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो सब भी ट्यून गुरु और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही ने ता तो सब श्रोता अवश्य जुड़ सकते हैं अपना पसंदीदा गीत होने वास्ते 7018870918 पर नंबर आक मौके फिर आऊँ शेयर करनो तो सब योगे 7018870918 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल कर कर ही अपना पसंदीदा गीत के शतों सो जरूर हो नहीं सकते हैं। तो बहरहाल चल देना है भी थोड़ा करे आगू बढ़ते हैं शतों और कार्यक्रम मंच कुछ एक जानकारी जो सु तो सो के गया सो शेयर भी करनी और तो सो गया सो दसनी भी हिन है ना। तो आइए शतों कार्यक्रम जो आगू बढ़ते हैं और कार्यक्रम में चल देना हगू छो धर्मशाला में ड्राइवर री बाहर अकी दिन में पुजे 115 आवेदन जी बिल्कुल। तो है वेले की बेरोजगारी कस स्तर पर जी पूरी जानकारी तू होगी शेयर कर देना चाहता हूँ। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC चालक परिचालक री प्रस्तावित हड़ताल व मद्देनजर निगम प्रबंधन ने किया सो वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी किया सो तेज करी दी इन छोटों। HRTC धर्मशाला मंडल जो 1500 रुपये प्रतिदिन री दिहाड़ी पर चालक रखने वास्ते किया सो अखी दिन में अब तक अली तक के 115 आवेदन प्राप्त अब हुए इन छोटों। इन आवेदकारी ट्रायल किया सो लू करते हैं ताकि आवश्यकता पैने पर किया सो बस अरा संचालन प्रभावित किया सुनाब हुआ है ना। और जी बिल्कुल सो तो ये सब जगह ही है अब है लेकिन हम फिलहाल धर्मशाला री गल करूँ करदा हाँ सो तो बस सेवाएं के ने सो न रुकनी 1500 रुपये दिहाड़ी किया सो मिल जाने हाँ। तो कार्यक्रम जो है थोड़ा करी आगू बढ़ेंदा इन छोटा हूँ और तो सब बन रहे इस समय आर जे सचिन कपूर सो के कार्यक्रम होने कर देन हिंदी अपनी गप्पा अपने अपने रेडियो सेट में रेडियो गुंजन धर्मशाला मंच। तो चलिए थोड़ा करी और आगू है भी बढ़ते हैं और तू सब भी लेकर रहेंदा इन छोटा हूँ इस प्यारे दे की तारी किनारी जी बिल्कुल नंदन तू सब भी जाएगी छोटो बनी रही है जुड़ी रही है तुंदे अपने वीडियो इंजन सो की छोटो इतों बाद कुछ एक और जानकारी के इंसो है तुसु तक जरूर पहुंच ले ते तक रे एंजॉय करा ये गीत।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून गुड रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा कहना सो बिल्कुल लाइव चल रही इन दंद ऐसा भी रेडियो सेट माता बहुत बहुत स्वागत है जी हक मौके फिर ऐसा भी होने वाले रहा श्रोतो लाइव कार्यक्रम चल रहा था तो है अपना पसंदीदा गीत होने वास्ते कॉल कर सकते हैं 7 0 8 8 7 0 9 8 पर चलिए चलते हैं थोड़ा करिए और आगू बढ़ते हैं श्रोतो और लेके चलते हैं तो सभी जो इस कार्यक्रम री कनारी और कार्यक्रम रे इस जानकारी री कनारी शो तो नशा मुक्त कांगड़ा बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था पर किया सो जोर रहना जी बिल्कुल कुलभूषण वर्मा जी अब नोए एसपी इन इंदे और इन्हें अब कार्यभार किया सो संभालो आशो तो कांगड़ा एसपी रा कार्यभार यारे कंधे पर अब अशोक वेतन जी मुझे लगता ट्रांसफर हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश सब तो मोटे जिला कांगड़ा में कानून व्यवस्था भी कमान एवं नए पुलिस अधीक्षक एसपी कुलभूषण वर्मा वे हाथ महाशो तो अब एक कमान एसपी रे कमान के सो कुलभूषण वर्मा वे हाथ महा बुधवार दोपहर बाद तीनिया श्रोतों धर्मशाला स्थित पुलिस मुख्यालय पूज करके ऐसा अपना कार्यभार विधिवत रूप थो कि ऐसो संभालो श्रोतों कुर्सी संभालते ही तीनिया नए एस पी ए के ऐसो जिला में नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पर्यटन नगरी व्यवस्था जो सुधारने का स्पष्ट संदेश दे दिता कुलभूषण वर्मा इस तो पहले कांगड़ा ही नूरपुर रह गए थे सो पुलिस जिला में एस पी वे रूप में सेवाएं देते थे है ना पहले नूरपुर में थी बहरहाल इंदे अगले श्रोता असुओं के कनेक्टेड हैं पूछ दिन कौन बलुंदन और कड़ी थो बलुंदन और यह जानकारी जो श्रोतों जरूर है तुसो की शेयर कर ले हेलो
1: हेलो नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: कैसे आप
0: बहुत बढ़िया जी कौन बलुंदन और कड़ी थो बलुंदन
1: मैं साक्षी बोल रही हूँ
0: अच्छा कड़ी अच्छा अच्छा कुंदन गीत होना जी
1: आप 6 बजे वाला रेडी चलाते हो
0: हाँ जी
1: 6 बजे वाला जो लगता है रेडी गुंजन में
0: हाँ जी
1: चलाते हो
0: अजी तुम्हें गाने समझ इच्छुक करते 6 बजे वाला क्या बोल लूँ देना
1: आज 6 बजे क्या मिनट में ना जो रेडी गुंजन में गाने लगाते हो फिल्मी वो चलाते लाइव सुनते हो
0: हाँ जी हाँ जी
1: सर मैं कॉल करती हूँ आपको कॉल नहीं लगता है
0: अच्छा जी सो कार्यक्रम में फोन इन कॉल इन कार्यक्रम नहीं है सो ना जी कॉल इन कार्यक्रम में इतनी मैं तो है कॉल कर सकते ना चाहिए तो वाट अलाउड नहीं है सो फोन इन कार्यक्रम नहीं है हाँ जी जी कुंदन गीत होना पसंद कर ले
1: कोई भी गाने सुना दो आप
0: अच्छा कोई भी हाँ जी
1: अपनी इच्छा से सुना दो बन्नी वाली माता का
0: अपनी पसंद रहा
1: हाँ जी बन्नी वाली माता का
0: कुंदन जी गलु गुणे वाली माता रहा
1: बन्नी बन्नी वाली माता
0: अच्छा बन्नी वाली माता रहा चलिए ठीक है जी जरूर होना ले दूसरो
1: उनका मेरे को बहुत अच्छा लगता है
0: हाँ जी
1: उनके बहुत अच्छा लगता है गाना
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है जी जरूर होने ले
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद जी श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप अगेन सो चल रही हैं कार्यक्रम में जो थोड़ करी और हगो बढ़ दे हिन श्रोतो और इन अगले श्रोता आंसू के कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बोल लूँ देन और कड़ी थो बोल लूँ देन हेलो
2: राम राम भाई जी
0: राम राम जी राम राम
2: क्या हाल चाल भाई जी
0: बहुत बढ़िया जी तो दस तुम दे क्या हाल चाल ना
2: बढ़िया भाई जी बोलना दी आशीर्वाद
0: है हाँ बिल्कुल त्यार आशीर्वाद तो चिंता है ना जी त्यार आशीर्वाद बिना आता है जिंदगी ना जी सकते न
2: जी बिल्कुल त्यार आशीर्वाद आपको जिंदा पत्ता भी नहीं सकता
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं ले सकता बड़ा मुश्किल है जी। और कुंडन की थोड़ा पसंद कर ले जनाब,
2: जी सोनू भूंगा
0: सोनी भूंगा।
2: जी।
0: चलिए जी, जरूर तुम वो गीत होना ले आना जी।
2: जी भाई जी धन्यवाद।
0: और
2: ओके
0: कुछ
2: नहीं
0: रखड़ा नहीं, कुछ नोयता जी?
2: तो जी तो कुछ नहीं फिलहाल भाई जी, अब मेरा कृपा से अब फिर सारा शुरू हो जाएगा।
0: हाँ जी, कटे
2: तो अभी उरा आ रही तैयारी करूं दे सब आना अपने।
0: तेरी तैयारी करूं दे जी?
2: उरा लगाने री
0: अच्छा, उरा लगाने री। हाँ साड़ा वे शुरू बिल्कुल।
2: जी।
0: अले बस
2: चलो और हाँ जी
0: तो क्या बोलूंदे जी बोला। अच्छा
2: ना ना कुछ ना मिलो और इत्यादि लगे अच्छा सब अपने अपने बिजी है ना आजकल खेती बाड़ी में। जी
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खेती बाड़ी में तो रेडियो सुनने रहा मजा कुछ और रहा ना जी। यार रकम में
2: जी
0: लगे
2: जी
0: बोलता है
2: बिल्कुल
0: रेडियो कर खबीड़ा पर रखे करे के ऐसा चल रहा बुआ।
2: हाँ जी हाँ जी कम मन ही मन लगे रहता सब नहीं रहा, टाइम पास भी बढ़िया रहा काम भी चल रहा।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मज़ा आऊँ
2: जी
0: बड़ा
2: जी
0: हूँ दा जी। आकाशवाणी 103.4 बड़ा
2: जी
0: हूँ
2: जी
0: दा आ
2: जी जी
0: रहा लाड़ अंदर ना जी।
2: जी जी हाँ
0: जो आल बाने रहा बड़ा शौक तो
2: हाँ गोरू
0: मैया।
2: ला आऊं ते जी पर ला आ रहा टाइम दो था बाद के जो तुमने था मैं मतलब फोन ना जी गाने लगाई हर ने
0: अच्छा
2: इन तरीयों बोरिंग ना बंदा था काम भी चले रंदा। चलो धन्यवाद
0: चलिए
2: भाई जी।
0: ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्ते,
2: ओके भाई जी जय भोलेनाथ।
0: जय भोलेनाथ जी। श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप कैंसो चल रही है। चलिए कार्यक्रम जो बड़े थोड़ा करे और आगो श्रोता और कार्यक्रम मंच है फरमाई शरद और क्या सोसू पूरा करना हाशा तो बन्नी मातरा भजन के आसो हुन्ना हा बन्नी आली मातरा है ना जी। ता इंदे बड़ी प्यारे दे श्रोता ने जो कि आसो की जुड़ाव रखते हैं और प्यार रखते हैं। बहरहाल इस गीत तो पहले के आसो तो सो इसकी तरीके नारी के तो तू लेकर चल दे बने रहे तो इस बार जे सचिन कपूर सो की गूंज अपने पन रही और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रहे।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सब बीएटी उनको रोर कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के न श्रोतो सब लाइव हूँ कर देने अपने अपने वेडियो सेट में आइए श्रोतों कार्यक्रम जो हगो बढ़न दिन और लेकर चल दें तू सब भी जो अब कार्यक्रम में थोड़ी करी हगू वेडियो सेट्स होगी तो है इस समय बन रहे हिंद श्रोतो वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गए तो सब कॉल जरूर कर सकते हैं 708-8-8-709 पर नंबर आक मौके फिरे 708-8-8-709 पर कॉल कर सकते हैं। बहरहाल इन अगले श्रोता हसोगे कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: हेलो नमस्ते भाई।
0: नमस्ते जी। नमस्ते कौन बोल रहे हैं और कड़ी थों बोल रहे हैं?
1: सुमन बोल रही दाढ़ी।
0: अच्छा सुमना जी क्या हाल चाल दाढ़ी रे और तुंदे करे लुगरेन
1: लुगरे बकरी चार ना।
0: अच्छा अच्छा
1: और खरेन थे
0: बस जी तुम दा आशीर्वाद है भी ठीक ने खरेन
1: मम्मी
0: सब ठीक ने जी।
1: अच्छा जी।
0: अच्छा जी कुन दिन की थोड़ा पसंद कर ले
1: नहीं ये कोई बोले संतरा
0: जी भोले शंकर
1: जी भोले शंकर रंगाई है आजा हरी ने तरसान है ना।
0: अच्छा कथी है जी
1: इंद बेचारे बच्चे ना जवान ही बेचारी रात की सुतरी सुतरी मरे रे रे।
0: अच्छा
1: केले बेचारी रंग दी कोड़ी भी आई थी रे दबू बाहर रंग दा हो
0: हाँ जी
1: मरने रहो क्या पता जाएगी वो मरी संजा खरी गल बात करी तो गया गया
0: का बीमार बुमूर थी या कुछ के
1: ना भाई कुछ ना खरे पर दिया बीमार कुछ ना
0: कोई बीमारी तो ना थी जी नॉर्मल कोई बीपी शुगर ऐसा कुछ
1: नहीं है ना और बस बीपी उन्दो थोड़ा सा कभी कभी आई थी नहीं तो खरे थी नहीं बस चलो ये नहीं
0: अच्छा
1: कोई पता ना लगू रात की सुपरे सुपरे क्या बोलोगा है।
0: अच्छा बीपी बंदा तो
1: हाँ बिस्किट दो आए थे यहाँ सही है बच्चे बेचारे डब्बो सो गए ना सैने तेरे थोड़ी बेचारे तू करी था नकाल नकुल बेचारे।
0: अच्छा तो कितनी कितनी करी है स्थिति यारी कितनी करी उम्र थी?
1: उम्र तो ऐसे थी कोई 60 साल हुए हैं।
0: 60 की साल
1: साठ करे आज कल साल लगत ने देर लग दे वाला।
0: अच्छा
1: करे थे ना ले लग दे थोड़ी 7 साल लगे।
0: अच्छा
1: करे नहीं है यंग ये लग दे खेल ले।
0: अच्छा चलिए तो चलिए अभी जिंदगी ऐसी ना कि जिंदगी में कोई भरोसा नहीं कहना क्या है बुझ के चासू
1: तो ता संजा दाई खरी भर चंगा कुत्ता अंडा हो हम जो के कने ते रात्री भी आ गए से
0: और वाकई में लाइफ रा कोई भरोसा नहीं है।
1: हां मेरा कोई भरोसा नहीं।
0: हां बिल्कुल चलिए था क्या क्या क्या कर सकते रे ए ए मृत्यु लोक हित आए है ना जी जन्म लियो था गाना भी जरूर
1: मन में तो आए ना अरे
0: हां सो सब भी गाने भी जरूर दुख
1: हुंदा ना जरा और तो क्या टेंशन दुख है हुंदा ना जरा
0: हां दुख हुंदा हां अपने जने चल गए चतने दुख तो हुंदा जी बाकी में
1: हां सही है तो बल दे मरना तो जाएगा सब दिया सुई मरना पर वे हो
0: चलो टाइम मरा बुझेगा चना टाइम जी हाँ चलो उम्री खाई भी खुरे बुनना था चलो अभी पता कि गान आपके रास्ता ना गान आता ही नहीं है पर थोड़े जी हाँ आ रहा हूँ करी है बड़ा दुख लगता कि हाँ भाई बिल्कुल खरे थी समझा खरे सकते थी और है ना
1: तो फिर समाल ने आ भी बाप क्यों तो चल बंदा बल्दा चलो मरी गया कोई गान ना।
0: हाँ जी हाँ जी
1: मन हुए सब कुछ करूँ बल्दे तो थी बल्दे ना अपने अपने सो अपने में कई बार दूर होते तो सो कहने बाहर में
0: हाँ जी
1: है ना
0: हाँ जी
1: तो आगा लो तक है चलो हम आई है कोई ऐसा बोले शंकर वाला
0: चलिए ठीक है जी जरूर होने ले
1: हाँ जी ठीक है धन्यवाद
0: धन्यवाद जी। শ্রোতা এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ বা রেডিগুঞ্জন ধর্মশালা তো এসে বি টিউন করর কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপ্পা গেন সো হুন কর দেন রেডিও সেট মা বরহাল ইন্দে আগলে শ্রোতা সুগে কানেক্টেড হিন পুজ দেন কোন বলুন অর কড়ি তো বলুন দেন। নমস্তে জি।
2: হ্যালো ভাই, নমস্তে।
0: নমস্তে ভাই, নমস্তে।
2: ঠিক ঠাক না?
0: বহুত বড়িয়া জি। তো বল্লে তো ঠিক ঠাক না?
2: বদি ভাই জি।
0: কোন বলুন দেন অর কড়ি তো বলুন দেন।
2: না ভাই, পিঙ্ক বল লখনা আরতে।
0: अच्छा अच्छा और ट्विंकल जी कौन देने गीत थोड़ा पहले तय दसी दिया
2: जाना मंडेरा पार।
0: जाना मंडेरा पार,
2: हाँ जी।
0: चलिए ठीक है जी। और खाने
2: ठीक भाई?
0: सब ठीक ठाक ने मनो?
2: हाँ जी
0: ठीक है। ट्विंकल जी जरूर होना लेते सुबह गीत।
2: ठीक है जी, ठीक है जी।
0: श्रोताओं तो ऐसा सब श्रोता जरूर कॉल कर सकते हैं 708-8-8-709 पर। नंबर आख मुके फिर आऊँ तू अगे साझा करें 708-8-8-709 पर तो ऐसा सब श्रोता कॉल कर सकते हैं। बहरहाल इन अगले श्रोता अस हो गए कनेक्टेड हिन पूछते हैं कौन बल्लू दैन। नमस्ते जी।
3: नमस्ते सचिन जी।
0: हेलो, नमस्कार जी।
3: नमस्कार सचिन जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार, ठीक ठाक ना? हाँ जी हाँ जी, ठीक ठाक ने जी।
3: ठीक तो है, कुछ दिल ले गोर वजह से।
0: हाँ जी,
3: दिल ले गोर रख रहे हैं ये कुछ दिल वाले गोर ने तो सर।
0: अच्छा, तीन लगो कर देन।
3: हाँ, कुछ सो ते टैलेंटी जेड़ा तो सो सो ना लगे यार।
0: हाँ जी, आवाज नहीं चुकर दिखले जी।
3: खसमा घर मोहन सिग्नल का प्रॉब्लम आता है ना।
0: हाँ जी जी, क्या बोलूं दे थी एक मौके फ्री फरमल ले
3: मैं उदो जरा तुम सो बनने टैलेंट में को जी करना है टैलेंट सो देन लगो रवाज।
0: अच्छा
3: ओ ठीक रात में।
0: हाँ जी ठीक ने, ठीक ने, बड़ी हाँ जी।
3: ये सोचू और रही है कभी ये तेल मंदे का दारा कुंदे ही है।
0: अच्छा,
3: सोच बचार चलूआ वे आकर गा का संगनी।
0: अच्छा,
3: तो भी दो दस दिन दिन दस सारे बारे सोचू और की दारा चिट्टी चू की घरे पालू क्या करूँ तीन देखते हैं प्रोग्राम ही बनूंगा तो सोच बचार चलूआ।
0: अच्छा,
3: मैं तो सचिन से कहीं लेते हैं गाना होने तो कोई खराब है।
0: अच्छा, तो कुंडल गीत होना पसंद कर ले जी।
3: वो अजय पुर बुरी गाना होना भजन होना सो किरदार मारे
0: किसेरे भजन जी?
3: ये अजय पुर मोरी है।
0: अजय पुर मोरी रा
3: अजय
0: कुंडल ना ना दस ले जी।
3: किरदार मारे भी अजय पुर मोरी को रहना ही
0: किरदार मारे।
3: हाँ जी
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल।
3: हाँ जी हाँ जी,
0: ठीक है जनाब, जरूर हुनर लेते सुबह गीत।
3: ठीक है, धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी। श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम इस वक्त इन दी अपनी गप्पा गेन सो चल रही। श्रोताओं आइए कार्यक्रम जो आगो बढ़ते हैं और इन अकोर श्रोता गणना सो के कनेक्टेड हैं। फरमाइश रहा दौर लंबा चल रहा। नमस्ते जी।
4: नमस्ते नमस्ते सचिन। नमस्ते।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, कौन बल्लू देन और खड़ी थो बल्लू देन?
4: मैं एक छोटे आदमी हूँ जी।
0: हाँ जी
4: अनिल, छोटे साथ में तो अनिल।
0: हाँ जी अनिल जी, नमस्ते।
4: मेरा परिचय अनिल है जी।
0: अच्छा जी अनिल जी,
4: जी आज मैं आपके एक बड़े एक नया विषय मेरे लिए मिला हुआ है।
0: अच्छा,
4: नया विषय उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ आपसे।
0: अच्छा, नया विषय जी, जरूर बल्ला बल्ला बल्ला।
4: देखो सचिन जी, हम बोल रहे हैं कि हम एक तरह विकास भी कर रहे हैं।
0: हाँ जी,
4: और हमारा समाज ना जाने किस विकास की ओर भाग रहा है
0: जी।
4: ठीक है, आजकल एक शादी सीजन चला हुआ देखो आपने
0: जी,
4: बिल्कुल सही है ना। ठीक है, कुछ आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। एक हमारे समाज में कल्चर आ चुका है कॉकटेल का, सुना आपने? कॉकटेल शादी से पहले कर, शादी से पहले की जाती है कॉकटेल। पार्टी का रिवाज चल गया है तो मेरे लिए तो मतलब बड़ा सोचने का, हर आदमी का सोचने का विषय है कि पहले तो ये चीज थी नहीं, अब कहाँ से आ गई और दिनों दिन बढ़ती जा रही है, है? और देखो विकास के नाम पर मेरा ख्याल से हमारी ये सोच का दिवालियापन ना इस हद तक निकल चुका है कि जिससे हम उस दिवालीपन का कोई इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना से परे है। देखो विवाह एक पवित्र बंधन है, ठीक है, और शादी से पहले दारू और मीट बांटेंगे लोगों को तो पवित्र कहां से रह गया, वो तो अपवित्र पहले हो गया।
0: पर
4: अच्छा, और दूसरी बात ये कि वो इतना खर्चीला हो गया है कि कॉकटेल पीना खर्च होता, मैं उसका हिसाब लगाया, मेरे गुरु में शादी हो रही थी का तो कम से कम को 30 साल टेबल लगा रखे और एक एक टेबल पर 4 बंदे बैठ रहे थे, तो एक तरफ जो बूढ़े की तरफ वो बैठा हुआ था, दूसरी तरफ का बेटा भी बैठा हुआ था। अब मुझे बताओ कि समाज कहाँ है, क्या किस सोच की सोच से हम अग्रसर हो रहे हैं? अब तो शादी करना भी मेरे ख्याल बड़ा मुश्किल हो गया है, अगर लोन या मतलब कर्जा लेके शादी कर भी दी जाए, कर भी जाए ना, तो माँ बाप का पता नहीं औलाद उसको माँ बाप को रखेगी नहीं रखेगी बाद में, क्योंकि जब पैसा रहेगा नहीं, ऑलरेडी कर्जे पे हुआ, लोन पे हो गए, पहले मतलब उसको कर्जा चुकाने में ही टाइम वक्त निकल जाएगा, और बच्चों को पता नहीं रखना नहीं रखना, वो भी उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो गरीब आदमी कर्जा लेके बहुत मुश्किल है शादी कर, तो पहले सीने को पता नहीं कहाँ से हमारी कुरीति आ गई है मेरे ख्याल से, और इस ढंग से मतलब बढ़ गया कि अगर मेरे पड़ोसी ने किया तो मुझे भी करना पड़ेगा, मतलब एक मैंडेटरी है, वो मैंडेटरी हो गया। तो अगर आप पहले बोल रहे कि हम भगवान की पूजा करते हैं, कथा करते हैं, वो चीजें रही नहीं, ये सब चीजें आ गई है, ये मेरे को मतलब शायद आपने भी देखा होगा, देख ही रहे होंगे, वो कोई डीजे लगाते हैं जी पहले दिन ये तो पहले कीर्तन भी करते थे लोग, अब वो कीर्तन वगैरह हमारे समाज से हट गए हैं, उनकी जो वो चीजें गायब हैं, ये सब चीजें ये नई चीज एडिशन हो गई है, और इसी ढंग से एडिशन हुई कि ठेके वालों की बल्ले बल्ले हो गई।
0: हाँ ये तो है
4: ठेके वालों की बल्ले बल्ले होगी, मुर्गे मीट वालों की बल्ले बल्ले होगी, बाप है वो कर्जे में जाएगा, नेचुरली है सारे एक जैसे नहीं होते, सोचो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
4: मामूली आदमी शादी कर ही नहीं सकता है, और शादी करने से मेरे से कम से कम 20-22 लाख है, 20-22 लाख, मैं मामूली बात कर रहा हूँ, जिस शादी हो रही है मेरे देश में,
0: जैसे साहब होगी बच्चों दिन
4: ये बहुत गंभीर बात है, हम सब को इसी के बारे में गंभीरता से विषय में सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैंने तो पहले बोला ही मेरे मतलब विषय शायद आप भी कभी सोचोगे तो कभी सोचना बैठ के अकेले बैठ गए कि मुझे उस चीज को पिक्चराइज करना दिमाग में है कि उस चीज को मतलब कि बात सही है गलत है, कि मामूली आदमी जरा ध्यान लगाने वाला आदमी मतलब क्या कोकटेल कर सकेगा।

0: सोचो, तू मेरे जो दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया देख के भी, और मैं घबरा जाऊंगी यार। सुसाइड का भी ऐसा भी कारण बन सकता है कल को, जब कर्जा होगा तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि धैर्य बच्चों में है ही नहीं।
1: बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल।
0: देखा देखा जी, देखा देखी में बहुत कुछ होगा जी।
1: चलिए ठीक है अनिल
0: तो
1: जी, थोड़ा कभी इजाज़त ले लेते हैं, फरमाइश
0: ठीक है,
1: हासिल है,
0: धन्यवाद
1: बड़ी इंटरेस्टिंग है ना जी।
0: समय देने के लिए,
1: धन्यवाद।
0: मिलने के लिए
1: तो
0: धन्यवाद।
1: समय समय पर किया सो, बिल्कुल इस इन्हें सामाजिक मुद्दे पर किया
0: पर
1: सो,
0: इस चीज के बारे सोचना गंभीरता से कि
1: गल चुक
0: क्या
1: जाना।
0: बताया
1: हम
0: इन्होंने,
1: बिल्कुल मुंजो अंदर भी समझ आ थोड़ी
0: कभी
1: घड़ी।
0: विषय रखना है ये ना, और
1: बिल्कुल
0: इससे
1: बिल्कुल
0: कभी मंत्रणा करना। ठीक
1: जी,
0: है, धन्यवाद धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी। श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला, तो ये सभी ये ट्यून कर रो, और आइए बन्नी वाली माता रा भजन के श्रोताओं से हो लेन, फरमाइशा बहुत ने सभी पूरे करने की कोशिश अपनी औरतों की ऐसा जरूर कर ले है।

शोधों कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो बढ़ंदा हिन और फरमाइशा बड़ी ज़्यादा इन शोधों ये फरमाइशा जो ले करे चलता है थोड़ी करे और हगो और तू सब भी जो हुनंदन अगले दुई बोल।

तो कार्यक्रम हिंदी अपने गप्पा चल रही ना। और अब इजाजत दे जी समय बचेगा तो उसे सब भी था अलविदा लेने रहा। और जिसे री फरमाइश रहेगी इन सोते जरूर अस होगी जुड़ी सकते हैं चूर थों पंच और अपनी फरमाइश पूरी कर ही सकते हैं। बहरहाल हम सचिन कपूर ले लेने तो सो तो इजाजत माँ बड़ी भी सेवा करते रहे बुजुर्गों की सेवा की सो करते रहे श्रोतों और अपना ख्याल रखा प्रकृति का ख्याल के सो जरूर रखा। इन शब्द था लेनो इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
4: अरे मरी क्या?
5: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
4: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
5: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
4: तिलक साहब जिंदा है?
5: तिलक?
4: हाँ।
5: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
4: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोल नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
5: मुझे माफ कर दीजिए।
4: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
6: पता है, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
7: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
6: या आपको एक फोन आएगा।
8: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
6: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
8: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
7: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
8: रिसीव करते वक्त नहीं।
7: तो याद रहे,
9: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
10: पंडित, मुहूर्त कब का निकला?
11: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
10: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
11: आप चिंता ना करें।
10: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
11: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
12: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
10: तुम क्या खड़ा?
12: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
12: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
13: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
15: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
14: हाँ बोलो।
15: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
14: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
15: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
12: गजब बेइज्जती है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है जी सभी सुनने वालों का, सभी श्रोताओं का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, और कल क्योंकि छुट्टी है तो कल की छुट्टी का आनंद जो है वो ज़रूर ले रहे होंगे। बहरहाल कार्यक्रम को आगे हम ज़रूर बढ़ाएंगे, लेके चलेंगे आप सभी को श्रोताओं इस जानकारी की ओर, और जानकारी के बाद मौसम की जानकारी। जैसे कि आप सभी बखूबी जानते हैं कि मौसम की जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, और चलिए लेके चलते हैं आप सभी को। इस समय श्रोताओं 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो धर्मशाला का मौसम बना हुआ है। नमी की बात करूं तो नमी इस समय लगभग 86% नमी जो है वो इस समय धर्मशाला में बनी हुई है। श्रोताओं आइए है मौसम की जानकारी अभी तक की, और भी अन्य जानकारियां जो है वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, ज़रूर आप तक साझा करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

खूबसूरत लग रही है।

शोधो एफ एम 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और कार्यक्रम में आप सभी आज सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। चलिए जी, कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को आज के विचार की ओर। शोधो, हमारा आज का विचार है, ज़िंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। शोधो, जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त जो है वो हो चुका होता है, लौटने का समय जो है वो हो चुका होता है, यानी कि अपनों को अलविदा कहने का समय जो है वो हो चुका होता है। शो तो वही है ना कि ज़िंदगी छोटी नहीं है, परंतु हम लोग ना जीना ही जो है वो देर से शुरू करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम लोग जीना जो है वो देर से ना शुरू करें, बल्कि जल्दी से जल्दी जो है वो शुरू करें। और बड़ी सारी परिस्थितियाँ जो है श्रोताओं वो ऐसी आती हैं कि इंसान लाइफ में बहुत जगह जो है वो बहुत सी अपनी ख्वाहिशें भी मारता है, बहुत जगह ऐसा होता है कि परिवार को बैलेंस करना जो है वो बड़ा मुश्किल सा लगने लगता है ना, रिश्तेदारों को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल सा लगने लगता है। इस तरह की परिस्थितियाँ जो है वो आती हैं, ज़रूर आती हैं श्रोताओं, लेकिन इन सभी परिस्थितियों को परे करके ज़िंदगी जीना सीखो शोतो। और ज़िंदगी छोटी नहीं है, परंतु हम जीना ही देर से शुरू करते हैं, वो खुशियाँ बांटना ही हम देर से शुरू करते हैं, वो घर पर इन्वायरमेंट ही हम बना नहीं पाते हैं शोतो, तो ज़रूर बनाएं। बहरहाल आप सभी बने हुए हैं एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला।

शोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और सचिन कपूर के साथ आप इस समय बने हुए हैं वीडियो के माध्यम से। आइए जी कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में शोतो आप कुछ एक जानकारियों की और नज़र जो है वो दौड़ा लेते हैं। जी बिल्कुल, जानकारियाँ जो है वो भी बहुत ज़रूरी है शोतो। दिल्ली से अमृतसर के लिए उड़ा विमान, पहुँच गया पाकिस्तान। जी बिल्कुल, एयर इंडिया की एक फ्लाइट रास्ता भटक कर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में जा घुसी। इसे पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक अथॉरिटी ने चेतावनी देकर वापस भेजा। एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के मुताबिक एयरबेस AI 321 विमान ने सोमवार रात 9:18 पर दिल्ली से उड़ान भरी। ये विमान अपने तय समय से 3 मिनट देरी से उड़ा था। उड़ान के दौरान विमान में तकनीकी खराबी आई। विमान को रात 10 बजे जो है वो श्रोताओं पहुंचना कहीं था और पहुंच फिर कहीं गया। जी बिल्कुल, लेकिन चलिए इतना बड़ा कोई ये इशू नहीं था। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी बने हुए समय RJ सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो गुड इवनिंग धर्मशाला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं और कुछ एक और जानकारियों के साथ जो है वो आपको रूबरू करवाएंगे। इसी तरह बने रहिएगा, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा खास जानकारियों के लिए अहम जानकारी के लिए। तो देखिए अभी तो बरसात मानसून जो है वो शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन बादल जो है वो कभी भी फट सकते हैं श्रोताओं। जी बिल्कुल, तो किन्नौर में बादल फटने से तबाही हुई है श्रोताओं। जनजातीय ज़िला किन्नौर के निचार खड में जो है वो श्रोताओं बादल फटने से नाले में अचानक आई बाढ़ से लाखों की संपत्ति बह गई श्रोताओं। हालांकि इससे किसी तरह की जानी नुकसान नहीं हुआ, परंतु एक तरफ मुख्य आम रास्ता भी बाढ़ की चपेट में आ गया है, दूसरी तरफ जल शक्ति विभाग को भी लाखों की चपत लगी है। मंगलवार रात को 3 बजे क्षेत्र में अचानक बादल फटा श्रोताओं, जिससे नाले में बाढ़ आ गई। मलबे की चपेट में आने से जल शक्ति विभाग की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई श्रोताओं, और दो जगह जो है वो श्रोताओं टैंक को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे क्षेत्र में पीने का पानी का संकट खड़ा हो गया है श्रोताओं। इसे अतिरिक्त मलबे और तेज बहाव से भारी भरकम पत्थरों के आने से गांव व मिडिल स्कूल को जाने वाले रास्ता भी पूरी तरह बाधित हो गया। बाढ़ आने की सूचना मिलते ही बुधवार सुबह तहसीलदार निचार नेगी व वास्तव विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वह स्थिति का जायजा लेकर विभाग को राहत कार्य के निर्देश दिए श्रोताओं। कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा और कार्यक्रम में इसी तरह जानकारियां भी आगे बढ़ती रहेंगी, साथ ही साथ गीत संगीत भी आगे यूं ही बढ़ता रहेगा। आइए लेकर चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस गीत की ओर।

बिल्कुल जी, इन दोनों के पास तो दिल है और हमारे पास भी दिल है, और एक ही दिल जो है वो सबके पास होता है ना, जैसे हमारे पास है और आपके पास है। बहरहाल शोधो FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना RJ वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। चलिए लेके चलते हैं कुछ एक ताज़ा जानकारियों की ओर आप सभी को। ज़िला कांगड़ा के तहत दो निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों से स्कूल में हुई मारपीट की घटना को लेकर जो है वो बाल कल्याण समिति ज़िला कांगड़ा ने संज्ञान लिया है। समिति ने इस दोनों मामलों को लेकर संबंधित पुलिस थानों से स्टेटस रिपोर्ट की और इन मामलों में उचित कार्रवाई करने के निर्देश जो है वो जारी किए हैं। बाल कल्याण समिति जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला के अध्यक्ष विक्रमजीत शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस जिला नूरपुर के पुलिस स्टेशन नूरपुर के क्षेत्राधिकार में सादवा के एक

सदमा के एक निजी स्कूल में एक बच्चे से हुई मारपीट पर समिति ने संज्ञान लेते हुए पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट जो है वो मांगी है, और साथ ही पुलिस को इस मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विक्रमजीत ने बताया कि एक अन्य मामले में आलमपुर के निजी स्कूल में एक बच्चे से स्कूल में जो है वो हुई कथित मारपीट के बाद हुए दर्दनाक हादसे की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन सुजानपुर ज़िला हमीरपुर से भी जो है वो स्टेटस रिपोर्ट की गई है। जानकारियों का पिटारा शो तो यूँ ही चलता रहेगा, जानकारियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। बस थोड़ी सी और देर और अब आपको लेके चलेंगे इस प्यारे से गीत की ओर। आप सभी यूँ ही बने रहिएगा वीडी गुंजन की इसी गूंज के साथ।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन। मैं सचिन कपूर हूँ, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यूं ही चलता रहेगा गीतों का सिलसिला, यूं ही चलता रहेगा जानकारियों का सिलसिला। आइए लेके चलते हैं आप सभी को आगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने यहाँ बताया है कि नशा तस्करी पर व्यापक कार्रवाई करते हुए आज सिरमौर पुलिस एवं स्पेशल टास्क फोर्स ने नशा तस्कर मोहम्मद अली तथा उसके ड्रग सिंडिकेट की लगभग 4.41 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की है। आरोपी द्वारा अर्जित संपत्तियों में 12 छोटे वाहन, एक ट्रक था तथा 3 मकानों की पहचान कर उन्हें जब्त कर लिया गया है। शतों जब्त संपत्ति से संबंधित प्रकरण की वैधिक कार्रवाई के लिए जो है वो सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली को प्रशोधित किया गया है। श्रोतों प्रवक्ता ने बताया कि NDPS अधिनियम के अंतर्गत की गई ये कार्रवाई नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धता है। मोहम्मद अली एवं उसके सहयोगियों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्य में NDPS अधिनियम के कई अभियोग पंजीकृत हैं। श्रोतों और स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा मुख्य आरोपी मोहम्मद अली को वर्तमान में जो है वो NDPS एक्ट के तहत सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, सेंट्रल जेल में जो है वो भेज दिया गया है। और नशे के इन तस्करों पर ऐसे ही कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह इन्हें इनकी संपत्तियां जो है वो जब्त होनी चाहिए और इसी प्रकार से जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये नशा जो है वो बंद हो सकता है। श्रोतो बहरहाल आप सभी बने हुए हैं आज सचिन कपूर के साथ, लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत।

0: शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर। आइए जनाब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक और जानकारियों के साथ जो है वो आपको रूबरू करवाते हैं। शोधो विश्व भर में पर्यटन की दृष्टि से विख्यात एवं मतलब महत्वपूर्ण अटल टनल, हम सभी जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है अटल टनल, है ना। रोहतांग प्रदेश के कुल ज़िला और लाहौल स्पीति ज़िला के पर्यटन के क्षेत्र में नया आयाम बनकर उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2020 को इसे जो है वो महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन किया था। श्रोतों 9.02 किलोमीटर लंबी ये टनल पर्यटकों को मनाली से लाहौल करीब 1 घंटे में पहुंचा रही है। वहीं 2020 लेकर अब तक करोड़ों की संख्या में पर्यटकों ने इस टनल को निहारा है और कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति के पर्यटन कारोबार को बढ़ावा दिया है। इस टनल के बनाने से पर्यटन के क्षेत्र में इजाफा हुआ है। पर्यटकों को यह टनल आकर्षित कर रही है। इस बार 27 अप्रैल से लेकर अब तक की बात करें तो लगभग 26 लाख पर्यटक मनाली और इसके बाद लाहौल स्पीति की वादियों में पहुंचे हैं। मनाली से लाहौल जाने वाले पर्यटक वाहनों का जो आंकड़ा है लगभग 3.25 लाख के करीब है। श्रोताओं तो जानकारियों का पिटारा है, श्रोताओं इसी तरह चलता रहेगा। ये लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर।
1: नए वीडियोस के लिए सब
0: बने रहें, जुड़े रहें हमारे साथ,
1: दबाना न भूलें।
2: दौलत पैदा करना पड़ा, रेगिस्तान लगता है।

ये तो नहीं पता कि मुझे क्यों याद आते हो लेकिन चलो, याद भी वही आता है जो व्यक्ति बेहतरीन हो, जो व्यक्ति अच्छा हो, जिसका नेचर अच्छा हो, जिसका मन सच्चा हो, दिल अच्छा हो, है ना। वही व्यक्ति जो है वो हमें अपनी जीवन शैली में याद आते हैं। बहरहाल, श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया इस समय एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं सचिन कपूर हूँ आपके साथ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को लेकर चलते हैं अगली जानकारी की ओर। चांदी 5,000, सोना 3,000 सस्ता। जी बिल्कुल, सोना चांदी की कीमतों में जो है वो बुधवार को गिरावट हुई है। श्रोताओं, इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी जो है वो बुधवार को चांदी 5,448 रुपये घटकर 2.22 लाख रुपये जो है वो आ गई है चांदी। चांदी 2 दिनों में ही 16,000 रुपये सस्ती हो चुकी है। श्रोताओं, वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना जो है वो पिछले कल 2,817 रुपये गिरकर 1.42 लाख रुपये आ गया है। श्रोताओं, इसमें पहले ये 1.45 लाख पर था सोने के दाम। इस महीने 14,285 रुपये और चांदी लगभग 41,315 रुपये गिरे हैं। 1 जून को सोना 1.56 लाख 10 ग्राम और चांदी 2.63 लाख किलो थी। श्रोताओं, इस साल सोना चांदी की कीमतों में लगातार जो है वो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 31 दिसंबर 2025 को सोने के दाम 1.33 लाख रुपए थे, जो 29 जनवरी को बढ़कर 1.76 लाख रुपए के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए थे। श्रोताओं, तब से अब तक सोना 34,000 रुपये सस्ता हो चुका है। वहीं चांदी की कीमत 31 दिसंबर 2025 को 2.30 लाख रुपये थी, जो 29 जनवरी को 3.86 लाख रुपये तक पहुंच गई थी। ये चांदी के अब तक की सबसे ज़्यादा दाम थे। श्रोतों, तब से अब तक 145 दिनों में चांदी 1.64 लाख रुपये सस्ती हो गई है। सोना चांदी के दाम में गिरावट की कई वजह हैं। श्रोताओं, इनमें अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम समझौता भी एक साइन है। इसकी वजह से भी जो है वो एशिया में युद्ध का खतरा कम हो गया है, जिससे निवेशकों ने सोना और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। चलिए, कार्यक्रम आप सभी जो है वो सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, और ये लाइव कार्यक्रम चला हुआ है आप सभी के वीडियो सेट पर। लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ यूं ही।

0: शुद्ध वेड़ी गुंजन धर्मशाला में अब वक्त हो गया है, शाम के 7 बज रहे हैं शुद्ध, और अब वक्त हुआ है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर एक सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदना भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
2: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की अपनी कविता में किया। शरद चांदनी उदार झुलसाता जेठ मास, शरद चांदनी उदार सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
3: शीत सौ में सिमटा जब सिंह विकल प्राण बेहद, धरती से अंबर तक गुजा मुक्त गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंता कयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेमी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागत, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ला ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नकवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों की मौत हो गई और 971 अन्य घायल हो गए। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस वक्त गुड इवनिंग धर्मशाला आप सुन रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। तो आइए जी कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं और अंतरा अब खबरों के बाद और अंतराल के बाद आपको सीधा लेके

बताइए ना, क्या होगा क्या होगा, हमें नहीं है पता, तो आप बता दीजिए कि क्या होगा। फ़िलहाल तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल तो ये होगा कि मौसम में बदलाव होगा, और बिल्कुल मौसम में ज़रूर बदलाव होगा श्रोताओं। ये जानकारी जो है वो आप तक हम पहुंचाते हैं कि मौसम में जो है वो किस तरह से बदलाव होगा। हाँ जी बिल्कुल, हिमाचल में 29 और 30 को जो है वो बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार जो है वो मानसून की दस्तक सामान्य तिथि से कुछ देर से होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां लगातार सक्रिय हैं, और आगामी सप्ताह में मौसम में बदलाव जो है, मौसम के मिजाज में बदलाव जो है वह ज़रूर रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जबकि 29 और 30 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी रहेगा। विभाग ने लोगों को नदी नालों और भूस्खलन संबंधित क्षेत्रों में जो है वो जाने के लिए, बिल्कुल उसके आसपास भी जाने के लिए जो है वो बिल्कुल मना किया हुआ है। खराब मौसम में आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखें कि नदी नालों के साइड जो है वो ना जाएं। मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने तथा स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की हिदायत दी है श्रोताओं। माना जा रहा है कि इस अवधि तक मानसून भी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर सकता है, जिससे वर्ष गतिविधियों में जो है वर्षा माफ करें जिसमें वर्षा गतिविधियों में और भी तेजी आ सकती है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ, और बिल्कुल लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। एंजॉय कीजिए आप सभी अपना वेड़ी गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने बन की, और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता हमारे साथ जुड़े होते हैं, हमारे साथ बने होते हैं और हमें सुनते हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, एक बार पुनः अपने इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए लेके चलते हैं श्रोताओं आप सभी को कार्यक्रम के इस पड़ाव की ओर। जी बिल्कुल, कहते हैं कि ज़िंदगी में जो है ना वो गीत संगीत भी बहुत मायने रखते हैं। अगर गीत संगीत ना हो ज़िंदगी में तो आप किस तरह से फिर ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। तो बहुत मायने हैं गीत संगीत के भी ज़िंदगी में श्रोताओं, इसलिए गीत संगीत मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी सभी की लाइफ में। बहरहाल लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

शुद्ध एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मुझे पता है आप सभी श्रोता ये सोच रहे होंगे कि गीत का पिटारा क्यों नहीं खुल रहा है। तो श्रोतों, ज़िंदगी में कभी कभी वो चीज़ें भी हो जाती हैं आपके साथ जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, और इंसान वही बेहतर होता है जो ना सोची हुई चीज़ों पर भी काम कर ले, है ना। तो ज़िंदगी का कोई पता थोड़ी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी का ये ज़रूर पता रखो श्रोताओं कि वो चीज़ें भी हो जाती हैं लाइफ में जो हमने नहीं सोची, है ना। तो ना सोची हुई चीज़ों का जो है वो बिल्कुल श्रोताओं, जो हमने चीज़ें नहीं सोची हैं उनके लिए जो है वो भी बिल्कुल तैयार रहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में, हम सभी की ज़िंदगी में आखिरकार हो ही जाता है ये इम्पोर्टेंट। बहरहाल आप सभी को लेके जाएंगे हम श्रोताओं इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। हाँ बिल्कुल, गीत का सिलसिला जो है वो बिल्कुल चलेगा श्रोताओं। लेकिन लेके चलते हैं इस गीत की ओर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा ना टेस्ट ले रहा हूँ इस समय अपने श्रोताओं का कि आप वही गीत सुनना चाहते हैं कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। चलिए ये गीत आपको हम सुनाएंगे श्रोताओं, मेरी

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर 2 MHz पर फिरी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेलिए जो कि सचिन कपूर। चलिए जो चलिए जनाब कार्यक्रम में गीत संगीत का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला आपके अपने रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। तो चलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और एक और जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। टांडा अस्पताल में हिम केयर से बाहर हुए सारे टेस्ट। जी बिल्कुल श्रोतों, ये आप बिल्कुल ठीक सुन पा रहे हैं। MIR के लिए अब 2750 रुपये लगेंगे, सीटी स्कैन के लिए 880 रुपये में होगा। श्रोतों बता दें कि बड़े टेस्ट जैसे MIR जो है उसकी फीस 2750 हो गई है, सिटी स्कैन की 880 रुपये से लेकर 1320 रुपये हो गई है श्रोतों। और ये सभी दवाइयों का भुगतान भी पैसे देकर जो है वो अब करना होगा श्रोतों। इस अधिसूचना के अनुसार केवल सर्जिकल इम्प्लांट का भुगतान जो है वो किया जाएगा श्रोतों, है ना जी। ज्वाली में दराट से वार कर ली ग्रामीण की जान। पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत पठियार के गांव मंडोल के वार्ड 5 में एक व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान सुभाष चंद्र पुत्र दालती राम के रूप में हुई है। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, इसी तरह जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है जनाब आप सभी का कार्यक्रम में, और बिल्कुल आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना वाकई में ही कमाल है, बेमिसाल है। चलिए कार्यक्रम में अब श्रोतों वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, और वापस आपसे रूबरू होते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं इस अंतराल के बाद। आप सभी यूं ही बने रहिएगा आपके अपने आरजे सचिन कपूर के साथ।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य।
2: सुर में गाना सी
0: PMSuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या?
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: बताएं, आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे।
12: पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का?
11: ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
6: ले जाएं, पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
16: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
15: हाँ बोलो।
16: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
15: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
16: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
13: गजब बेइज्जती है।

0: एफएम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आइए श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में लेके चलते हैं आप सभी को थोड़ी सी और आगे। प्लास्टिक का उपयोग बंद करें श्रोताओं। जी बिल्कुल, ये हम हर बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, लेकिन आज भी आप देखिए शादी विवाह में जो है वो प्लास्टिक की ही बोतल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना, क्योंकि वो चीज़ें चेंज हो गई है ना। अगर आप उस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर वो लगेगा कि है ना, वो मानसिकता कुछ इस समय जो है वो लोगों की अलग हो चुकी है। बहुत प्लास्टिक का उपयोग जो है वो शादी विवाह में किया जा रहा है श्रोताओं। प्लास्टिक का उपयोग बंद करें श्रोताओं, है ना, और ऊर्जा और पानी की बचत करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। घरों और कार्यस्थलों पर जब पंखे या लाइट की ज़रूरत ना हो तो उन्हें बंद करें। हम अक्सर देखते हैं ऑफिस में, अक्सर देखते हैं घरों में, अक्सर देखते हैं अन्य प्लेसेस पे जहाँ भी हम काम करते हैं या फिर अपने घरों में ही बेमतलब के भी लाइटें जो हैं वो जली रहती हैं, बेफालतू की लाइटें जो हैं वो जली रहती हैं, है ना। तो घरों और कार्यस्थलों में जो है वो जब आप ना हो तो लाइट्स बंद करें, फ़ैन जो हैं वो ज़रूर बंद करें श्रोताओं। पुराने बल्ब की जगह ऊर्जा बचत एलईडी बल्ब जो हैं वो ज़रूर लगाएं अपने घरों में। ब्रश करते समय या गाड़ी धोते समय पानी को व्यर्थ ना बहाएं श्रोताओं। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए तो है ही हैं लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पेड़ पौधे लगाएं अपने घर के आसपास या आस पड़ोस में, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जंगलों की कटाई को रोकने में अपना सहयोग दें। जंगलों में आग जहां लग रही है, जो लगा रहा है उन्हें पुलिस के हवाले ज़रूर करें और दूसरों को भी इसके प्रति जो है श्रोताओं वो जागरूक ज़रूर करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कचरे को हमेशा कूड़ेदान में ही डालें, डस्टबिन में ही डालें, गीले कचरे से घर पर खाद बनाएं और सूखे कचरे की जो है वो रिसाइकल करने के लिए दे दें। सूखे कचरे को जो है वो रिसाइकल करने के लिए दे दीजिए। प्रदूषण कम करने के तरीके अपनाएं श्रोताओं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छोटी दूरी तय करने के लिए पैदल चलें या साइकिल का उपयोग करें। लंबी दूरी के लिए सार्वजनिक परिवहन यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल जो है वो करें श्रोताओं। ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट हुई हैं जो भी अभी इन 5 मिनट में हमने की हैं श्रोताओं। चलिए कार्यक्रम मैं इस समय थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और 7:45 हो चुके हैं श्रोताओं। अब वक्त है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: चिकित्सा संस्थानों की तर्ज पर प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास जारी। 1975 के आपातकाल की याद में आज मनाया गया संविधान हत्या दिवस। प्रदेश में हुए कई कार्यक्रम। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा हमीरपुर के बिजड़ी में आयोजित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी संपन्न। केंद्र सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियों की दी गई जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा सुरक्षा मजबूत करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस व्यवस्था का दायरा बढ़ाया। और शिमला जिले में सेब सीजन को लेकर तैयारी शुरू। इस वर्ष 2,30,000 मीट्रिक टन सेब उत्पादन की उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र के नेरीकला में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3 टेस्ला MRI और अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले 2 महीनों में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑटोमेटेड लैब स्थापित कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है और विकास कार्यों में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
2: यहाँ विकास बहुत तेजी से होगा। जब से हमारी सरकार आई है हमने ये प्रयास किया है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो गांव में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। इस दृष्टिकोण से हमने योजनाओं को स्वरूप देना शुरू किया।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने नेरीकला में करीब 90 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। स्थानीय विधायक विनोद सुल्तानपुरी सहित अन्य नेता व गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा जिले में 250 से अधिक आबादी वाले सड़क से वंचित सभी गांवों के लिए सड़क की डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डलहौजी में आज एक बैठक में उन्होंने बताया कि चंबा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में स्वीकृत 65 सड़क परियोजनाओं में से 61 का कार्य शुरू करने के लिए लेटर ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया गया है। पठानिया ने जिले में सड़क परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने और वन स्वीकृति से जुड़े लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए। 25 जून 1975 के आपातकाल की याद में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। देश सहित प्रदेश में भी इससे जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करना है। अपने संदेश में विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र के इस काले दौर की सच्चाई को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाना आवश्यक है ताकि वे समझ सकें कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है।
3: 25 जून 1975 को मध्य रात्रि पूरे देश के अंदर जो है वो आपातकाल की घोषणा की गई और राष्ट्रपति द्वारा उसको नोटिफिकेशन कर दी गई थी। आज कांग्रेस पूरे देश भर में लोकतंत्र की बहुत बड़ी बातें कर, लेकिन उनके स्मरण में इस बात को मैं जरूर ध्यान में लाना चाह रहा हूँ कि रातों रात लाखों लोग पूरे देश भर में एक रात को ही जेल की सलाखों के पीछे उस वक्त डाल दिए गए थे।
1: दूसरी ओर सांसद अनुराग ठाकुर ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर कभी ना मिटने वाला कलंक करार दिया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन सभी लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को याद करने का अवसर है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए कई तरह की यातनाएं सही। इधर भाजपा द्वारा आज शिमला के रोटरी टाउन हॉल में आपातकाल पर आधारित विशेष

0: 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आगामी 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया है। इसका उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को सम्मानित और प्रोत्साहित करना है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा हमीरपुर जिले के बिझड़ी में आयोजित 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी आज संपन्न हो गई। इस प्रदर्शनी के दौरान केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन व जनकल्याण के 12 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। समापन अवसर पर बिझड़ी के तहसीलदार सुभाष कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजन भारत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक पहलों की जानकारी आम लोगों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महारल में सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियों और नशा मुक्ति पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी किए जाने और योजना में किए बदलावों पर आपत्ति जताई है। शिमला में आज पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों से हिमाचल प्रदेश पर प्रति वर्ष 164 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि पहले योजना का पूरा व्यय केंद्र सरकार वहन करती थी, जबकि अब हिमाचल जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए व्यय का अनुपात 90:10 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को मौजूदा रोजगार स्तर बनाए रखने के लिए 12,54,00,000 रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गैर जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी दर 320 रुपए से घटाकर 247 रुपए कर दी गई है। अनिरुद्ध सिंह ने आशंका जताई कि नई व्यवस्था से राज्य की वार्षिक वित्तीय देनदारी 800 से 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल हो गई हैं। मंत्रालय ने कहा कि संशोधित प्रावधानों के तहत मादक औषधि व मनोरोग पदार्थ NDPS अधिनियम 1985 के अंतर्गत आने वाले सभी टीके, रोगाणुरोधी मादक और मनोरोगी दवाएं शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि सभी कैंसर रोधी दवाओं को औषधि नियम 1945 की अनुसूची H2 में शामिल किया गया है। शिमला जिला प्रशासन ने आगामी सेब सीजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने इस संबंध में आज वर्चुअल बैठक कर संबंधित अधिकारियों से सेब सीजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उपायुक्त ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हुए सेब सीजन को सफल बनाने और बागवानों को बेहतर परिवहन व विपणन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। जिले में इस वर्ष करीब 2,30,000 मीट्रिक टन सेब उत्पादन का अनुमान है। इस बीच उपायुक्त ने मॉनसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आज अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को चिट्टे के विरुद्ध शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि चंबा जिला को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए प्रशासन के प्रयास जारी रहेंगे और इस तरह के खेल आयोजन इसमें मददगार बनेंगे।
1: हिमाचल सरकार ने जो लड़ाई शुरू करी है चिट्टे के अगेंस्ट, तो उसी को ओवरऑल सभी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की थीम रखा गया है ताकि ये जो मैसेज है ये जन जन तक पुलिस के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से पहुंचाया जा सके और सभी लोगों की भागीदारी इस लड़ाई में सुनिश्चित की जा सके। और जो हमारी ये कोशिश है कि चिट्टा मुक्त हिमाचल, चिट्टा मुक्त चंबा हम लोग बना सके, उस मुहिम के अंदर ये एक बहुत ही कारगर कदम के रूप में साबित होगा।
0: मंडी जिले में इस वर्ष करीब 2,500 किसानों की 1,000 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती से

0: जोड़ने का लक्ष्य है। मंडी में आज जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष 8,214 किसानों के 2,500 हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की तर्ज पर प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास जारी। 1975 के आपातकाल की याद में आज मनाया गया संविधान हत्या दिवस। प्रदेश में हुए कई कार्यक्रम। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा हमीरपुर के बिझड़ी में आयोजित मल्टी मीडिया प्रदर्शनी सम्पन्न। केंद्र सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियों की दी गई जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा सुरक्षा मजबूत करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस व्यवस्था का दायरा बढ़ाया। और शिमला जिले में सेब सीजन को लेकर तैयारी शुरू। इस वर्ष 2,30,000 मीट्रिक टन सेब उत्पादन की उम्मीद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: 14.91 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। तो चलिए श्रोताओं, अब वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, आप सभी को टाटा बाय बाय बोलने का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माँ बाप की सेवा करते रहिए। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सेहतमंद रहिए। इन शब्दों के साथ मैं सचिन कपूर लेता हूँ इजाज़त। नमस्ते धर्मशाला।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या।
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, UPI से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, UPI से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: UPI पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या,
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो पर मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा हो?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
14: ले जाए पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
16: बेबी ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
17: दिला तो दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा।
16: हाँ बोलो।
17: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे हो।
16: अभी बताती हूँ। बेबी टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
17: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
18: गजब बेइज्जती है।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने, और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो गुंजन धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नए पुराने 91.2 MHz पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपकी रेडियो होस्ट हूँ मैं ज्योति पठानिया।

सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो गुंजन धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। गीत सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या,
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा।
7: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे।
13: पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
14: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
13: तुम क्या खड़ा?
14: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
6: ले जाएं, पक्का?
14: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
16: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
17: दिला तो दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा।
16: हाँ बोलो।
17: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे हुए।
16: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
17: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
18: गजब बेइज्जती है।

जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।

दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.8 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।